ललित कला संगम सेशक पशिंग सिगर ओइबा इसेद असुम सकली कोनसम सरचंद्र गि मयक्ता खुंजा पाखंग माइथकपा।

ललित कला संगम की शेषक पशिंग नशक पा मतम इसे सिंग ताबिरे सहिरिंग की बसिंग दी हुइद्रोम नोरेन सरांगतेम हेमंत अमेदी कौनसम शरचंद्र हाउसिंग अमुक ताबिर सी सूर संगीत संगम की कांगु नशक पा मतम इसे सिंग आन बदा सुन नशक ली राजेन येन कोपम की मैयता नापाव अमत दी तहलऊ

सुर संगीत संगम की शेषक पर सिंह सक पर मतम से सिंह अदम ना उसे आकाशवाणी पर के कंगा चैनल के एक धन परिम देता भी रही आरो इबदा शेषक पर सिंह सिना असुन सकली लग्न रगी खन्ना लग्न रिबरा सैरिंग बा राजन यन कोपम

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में बड़े विस्तार का आह्वान किया। दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह। भारत आज चंडीगढ़ में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता करेगा। भारतीय नौसेना आज पनडुब्बी रोधी स्वदेशी युद्धपोत INS मालवण का कर्नाटक के कारवर में जलावतरण करेगी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने की योजना मंजूर की। भारत ने जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई। और चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज पीवी सिंधु का सामना उन्नति होटा से होगा। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। स्कोपिये में भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार फोरम में राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच इस दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो सकेगा।
5: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत का औषधि उद्योग नॉर्थ मैसेडोनिया में दवाओं और चिकित्सक उपकरणों के संयुक्त उत्पादन में निवेश कर सकता है। उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण, कोल्ड चेन, नवीकरणीय ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और स्टार्टअप क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने नॉर्थ मैसेडोनिया को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा रोधी अवसंरचना और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन जैसी पहल से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने अगले वर्ष भारत में आयोजित होने वाले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स में भाग लेने को भी आमंत्रित किया। नॉर्थ मैसेडोनिया से शुभश्री की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पूजा।
4: भारत की मेजबानी में ब्रिक्स देशों की स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आज चंडीगढ़ में शुरू हो रही है। तीन दिन की इस बैठक में मुख्य रूप से स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल स्वास्थ्य, महामारी से निपटने की तैयारी और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक सबकी पहुंच पर विचार विमर्श होगा।
6: यह बैठक स्वास्थ्य संबंधी प्रमुख वैश्विक प्राथमिकताओं पर सामूहिक कार्रवाई के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मंत्री स्तरीय बैठक में पारंपरिक और पूरक चिकित्सा, स्वस्थ जीवन शैली, मानसिक आरोग्य तथा सुदृढ़ स्वास्थ्य प्रणाली जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। आधिकारिक कार्यक्रम की शुरुआत आज वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक से होगी। इसके बाद कल केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: भारतीय नौसेना आज कर्नाटक के कारवार में माहे श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS मालवण को बेड़े में शामिल करेगी। ये भारत के स्वदेशी युद्धपोत निर्माण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह मुख्य अतिथि होंगे।
7: कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में निर्मित INS मलवान आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत तैयार किया गया है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है। इसमें RBU 6000 रॉकेट और DRDO द्वारा विकसित टॉर्पेडोज की शक्ति है। जर्मनी और भारत द्वारा तैयार किए गए सोनार का उपयोग भी किया गया है। माहेक श्रेणी के इस युद्धपोत तटीय और उथले समुद्र क्षेत्र में प्रभावी परिचालन के लिए बनाया गया है। इससे नौसेना की समुद्री सुरक्षा और पनडुब्बी रोधी क्षमता और मजबूत होगी। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
4: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने का फैसला किया है। उच्च शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी को बढ़ाने और पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर को कम करने के लिए ये कदम उठाया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को लागू करने के लिए दिशा निर्देशों को मंजूरी दी गई।
2: योजना के तहत सरकार न केवल स्कूटर बल्कि उसका बीमा, पंजीकरण, हेलमेट, आवश्यक सहायक उपकरण और 4 लीटर पेट्रोल भी मुहैया कराएगी। दिव्यांग छात्राओं, शहीदों की बेटियों और गरीब परिवारों की बेटियों के लिए आय सीमा की शर्त में छूट भी दी जाएगी। राज्य सरकार का कहना है कि ये योजना उच्च शिक्षा में बेटियों की भागीदारी बढ़ाएगी और खासतौर पर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों की छात्राओं के लिए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों तक पहुँचना आसान बनाएगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता UCC विधेयक पारित कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सदन में विपक्ष के हंगामे और विरोध के बीच ये विधेयक पारित हुआ।
3: UCC के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में एक से अधिक विवाह मान्य नहीं होगा। तलाक की प्रक्रिया कानूनी होगी और महिला पुरुष को समान उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। लिव इन रिलेशनशिप में 1 महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा और विवाह का रजिस्ट्रेशन ग्रामीण स्तर तक जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे अलग रखा गया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष पर मर्यादा का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। श्री नवीन ने कहा कि सरकार सदन में नीट सहित सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है।
4: और मैं कहूंगा कांग्रेस और विपक्ष के साथियों से, हम संसद के पटल पर हर प्रकार के संवाद के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन आपकी जो मर्यादाएं तोड़ने की परंपरा बनती जा रही है, जो अराजकतावती सोच आपके अंदर विकसित हो रहा है, निश्चित रूप से इससे देश कहीं न कहीं दुखी है और देश अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है।
1: भारत ने विश्व व्यापार में अपनी बढ़ती भूमिका पर बल देते हुए जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित, पारदर्शी और भेदभाव रहित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने वैश्विक व्यापार प्रणाली में भारत की भूमिका तथा व्यापार संधि, उदार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और विकासशील देशों के बीच सहयोग से व्यापारिक संबंध मजबूत करने के प्रयासों पर बल दिया। वाणिज्य विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत समावेशी वैश्विक विकास में भरोसेमंद और विश्वसनीय साझेदार है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु का मुकाबला भारत की ही उन्नति हुड्डा से होगा। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन भी आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। पुरुष सिंगल्स के ही शुरुआती दौर में आज आयुष शेट्टी का सामना अलवी फरहान से होगा। पुरुष डबल्स में MR अर्जुन और हरिहरन अम्स करुणन, मिक्स्ड डबल्स में रोहन कपूर और रुत्विका शिवानी गड्डे तथा तनिषा क्रेस्टो और ध्रुव कपिला भी चुनौती पेश करेंगे। इसके अलावा हॉकी इंडिया ने हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा भी की है। विश्व कप 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स में आयोजित किया जाएगा। भारतीय टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार की जयंती पर उनका स्मरण किया है। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि समाज के प्रति उनकी सेवा और महाराष्ट्र के विकास में उनका योगदान सदैव याद रखा जाएगा। फ्रांस की संसद ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का ऐतिहासिक विधेयक पारित कर दिया है। संसद के दोनों सदनों में सांसदों ने इस विधेयक के समर्थन में वोट दिया। इसके तहत स्कूल में विद्यार्थियों के मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इस फैसले से फ्रांस सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा

0: बाजी
1: मागी कुंशिकी वारी शीता आप दे नुक्शी बिदा बरा बाजी वारी लारी ता आप दे दी बाजी जो ओ खोंगे है कप्पी
2: अच्छा नुक्शी नहीं अब नुक्शी नहीं पा मागी कुंशिकी वारी शीता आप दे पुंगा वारी कुम ना याम नुआ करे अहिबा मन का भजन इथो अब दी छपा नमक योल अब दी पैसा दान यानी है पैसा याम पंगी
1: नुपी लोन में पाम दुना लोरक बनती है बाबा दी हंदे किसी दी मागी वारी सितारो बुदे नुक्से मन कर दुना चरा है लब सुई हैं मिन्नर की दुना लाख मिन्नर बने बाबा दी
2: भालो है इशा दी मिनुंशी ये बुदे लम्जा पूरे दुना
3: अधुना बाजी इसी है ना लाइबी की के हर बसु काय दे इनाव मलाक ले युम सिगे अकुप अता पुजा हो सनु इपाम द नुंगाई ने ले रुरे के हर बसु इसी की खुशी ने ना ना वाले मिने ना बनु हाई ती हर बसु ने आई की धमकता साहेब ना युम मामा तो ना ना साजनी मधुना साहेब इपानी अंगला यु हर बसु ले जगे बाजी आई करी मत साउ जरो तब तब उन्हें बाजी ऐ सीधी बफाव बतंग दी लेक तब मैं याद रहे
1: सीधा बु हरे हरे उनके खन भी बाजी बाजी ना ऐ दी अहन निंग अम्मी है जो ना करी है ना मरान शीर का माँ बु तांतोक पी दोरी नो बा माँ के वादी स्वाइद लोए रे ने बाजी
2: हरे हरे हरे कृष्णा मंगलाल ने हो जिक्षी बो
3: इस अफाव भी से क्या दनो ये उन्हें है कौन थोंग फाव कान से लगती बा माँ ना यूं बु ना ना बा पैसा का सा कर है मी इमाई भी मैं भी मैं कई नो ने तोड़ी सी बो

आकाशवाणी इम्फाल हौजिक नुमितुंबा पुंग तरानिथोय तारे कांगला चैनल गनि शुभ थौरम परें संदोपा हौजेरी संदोक्सरीबा मीडियम वेब मीटर सहुम निफु दशमिक अमा किलोहर्ट्ज़ निपान मलपुनिथोय हौजिक मणिपुरीदा नुमितुंबा की पाव ताबिरासी

0: पतंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश। आप सबका स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
3: और मैं हूं अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत और गुरशब्द सिंह राहुल जी ने। लिखते हैं,
2: झाड़ू जब तक एक सूत्र में बंधी होती है तब तक वह कचरा साफ करती है, लेकिन वही झाड़ू जब बिखर जाती है तो खुद कचरा हो जाती है। इसलिए हमेशा संगठित रहें और बिखर कर कचरा न बने।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद एकता और संगठित रहने का सुंदर विचार भेजने के लिए। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। श्रोताओं, हमें पहला संदेश मिला है कोका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी का। लिखते हैं,
2: डॉक्टर कामिल बुल के 24 तारीख को सुने, बेल्जियम में जन्मे कैसे भारत को अपना कर्मभूमि बना लिया, रामचरितमानस पर शोध किया और कामिल बुल के से कामिल बुल के बाबा बन गए। बहुत अच्छा लगा इतनी अच्छी जानकारी और प्रस्तुति के लिए। उमंग टीम को बहुत बहुत बधाई।
3: और अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली, बेबी, पूजा, राधिका, प्रभा देवी और मास्टर अल कबीर का।
2: भवानीगढ़ संगरूर पंजाब से परमिंदर सिंह रंधावा, लखनपाल रंधावा और सुरेंद्र कौर रंधावा जी का।
3: और गणेशवाड़ी कोल्हापुर महाराष्ट्र से संभाजी सुतार, चेतन सुतार और सारिका सुतार जी का।
2: पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, तनुजा देवांगन और ईशांत देवांगन।
3: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। एक बार फिर से प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए के अंतर्गत आज की कड़ी। श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं भारत के अनूठे मेलों की,
2: ऐसे मेलों की जो प्रयास है समुदायों को उनकी संस्कृति से जोड़ने का। इनके बारे में लोगों को अधिक पता नहीं है, लेकिन वे अपने आप में सचमुच अद्भुत हैं, जीवंत हैं और प्रेरणा देने वाले भी। तो कल हमने चर्चा की थी असम राज्य के जॉनबील मेले की, जहां वस्तु विनिमय प्रणाली का आज भी प्रचलन है।
3: आज हम चलेंगे एक और सुंदर और मनोरम उत्तर पूर्वी भारत के पर्वतीय राज्य नागालैंड और जानेंगे एक और मेले के बारे में। इसे हॉर्नबिल मेले के नाम से जाना जाता है। तो विमलेश जी, अब चर्चा को आगे बढ़ाइए।
2: जी अजीत जी, श्रोताओं, हॉर्नबिल महोत्सव या मेला नागालैंड का सबसे प्रसिद्ध सांस्कृतिक

0: मेला है। इसे त्योहारों का त्योहार यानी फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है। अजीत जी, आप जानते हैं कि ये कब मनाया जाता है?
1: जी विमलेश जी, हॉर्नबिल मेला हर साल 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है।
0: जी
1: ये कोहिमा के पास किसामा हेरिटेज विलेज में आयोजित किया जाता है। लेकिन विमलेश जी, एक स्वाभाविक प्रश्न मेरे मन में आता है और वो ये है कि इस उत्सव या मेले का नाम हॉर्नबिल क्यों पड़ा?
0: अजीत जी, बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है आपने।
1: जी
0: इसका जवाब भी उतना ही सुंदर है। हॉर्नबिल एक पक्षी है जो अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। ये जबरदस्त उड़ान भर सकता है। इसके पंख इतने शक्तिशाली होते हैं कि जब ये उड़ता है तो उसके पंखों की फूं फूं जैसी आवाज दूर दूर तक सुनाई देती है।
1: जी विमलेश जी, पूर्वोत्तर भारत में विशेषकर नागालैंड में इस पक्षी को यानी हॉर्नबिल पक्षी को साहस, सम्मान और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है।
0: जी यही वजह है कि नगा परंपराओं में, विशेषकर सर के आभूषणों में, हॉर्नबिल पक्षी का प्रतिरूप अवश्य दिखाई देता है। आइए अब जानते हैं कि क्या होता है हॉर्नबिल मेले में।
1: श्रोताओं, इस मेले में रंग बिरंगे पारंपरिक नृत्य देखने को मिलते हैं,
0: जी
1: जिनमें सबसे लोकप्रिय और आकर्षक है युद्ध नृत्य।
0: जी
1: युद्ध नृत्य में पुरुष योद्धा पारंपरिक हथियार लेकर नृत्य करते हैं। तेज ड्रम की ताल, वॉर क्राई और तालबद्ध पैरों की गति के साथ ये नृत्य होता है।
0: जी
1: विमलेश जी, एक बहुत विशेष बात तो हम भूल ही गए थे, ये तो बता दें कि इस मेले के दौरान एक बड़ी खास प्रदर्शनी होती है
0: जी
1: जिसे मोरूंग कहते हैं।
0: जी
1: ये मोरूंग होता क्या है?
0: अजीत जी, मोरूंग नागालैंड की जनजातियों का युवा आवास हुआ करता था। ये बांस और लकड़ी से बना हुआ बड़ा सामुदायिक भवन होता था।
1: जी, प्रत्येक गांव में कम से कम एक मोरूंग अवश्य होता था। वहां जनजातीय इतिहास, युद्ध कौशल, वाद्य संगीत और लकड़ी के हस्त कौशल सिखाए जाते थे।
0: जी यहाँ हस्तशिल्प, हैंडलूम यानी हस्तकरघा, स्थानीय व्यंजन इत्यादि प्रचुरता से मिलते हैं।
1: श्रोताओं, ये उत्सव नागालैंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रदर्शन है।
0: जी
1: यहाँ आकर लोग असली नागा जनजातीय जीवन, आतिथ्य और उनकी परंपराओं की ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी नागालैंड के बेहद खास मेले हॉर्नबिल उत्सव की।
0: जी
1: कभी नागालैंड जाएं तो इस मेले का आनंद जरूर लें।
0: जी
1: तो अब प्रस्तुत है आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है,
0: मोरूंग किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: मोरूंग किसे कहते हैं? 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने उत्तर व संदेश हमें भेज सकते हैं। और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो श्रोताओ, हमारा पहला कार्यक्रम है सुंदरिया।
0: कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में एक प्यारी गाय सुंदरिया की कहानी बताई गई है और उसके माध्यम से बच्चों को संदेश दिया गया है कि पशुओं में भी भावनाएं और संवेदनाएं होती हैं।
2: एक समय की बात है, हरियाणा के एक गांव में एक किसान रहता था। नाम था हीरा सिंह। निर्धनता के कारण बड़ी मुश्किल से उसके परिवार का गुजारा चलता था। उसके पास एक गाय थी, नाम था सुंदरिया। उस गाय के कारण हीरा सिंह से गांव वालों को बड़ी ईर्ष्या होती थी। निर्धनता का ये हाल था कि हीरा सिंह सुंदरिया के लिए चारा भी नहीं जुटा पाता था। वो भी गाय को बहुत प्यार करता था। वो चाहता था कि किसी प्रकार गाय को अच्छा चारा मिल सके, लेकिन तंगी पीछा नहीं छोड़ती थी, इसलिए कई बार उसके मन में एक विचार आया।
3: अब तो सुंदरिया को पालना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। कहां से आएगा उसके लिए चारा? यहां तो परिवार के खाने के लाले पड़े हुए हैं। सोचता हूं उसे किसी धनी किसान को बेच दूं, कम से कम अच्छा चारा तो मिलेगा उसे।
2: लेकिन हीरा सिंह अपने बड़े बेटे जवाहर सिंह से डरता था, क्योंकि उसे सुंदरिया गाय से बहुत लगाव था। जवाहर सिंह सुंदरिया को प्यार से मौसी बुलाता था। समय बीतता गया और आखिर परिवार की दरिद्रता समाप्त करने के लिए हीरा सिंह नौकरी की तलाश में दिल्ली आ गया। वहाँ एक सेठ के यहाँ उसे चौकीदार की नौकरी मिल गई। एक दिन सेठ ने कहा,
4: हीरा सिंह, शहर में आजकल दूध की बड़ी किल्लत हो रही है।
3: जी मालिक, ये बात तो है।
4: पता नहीं जो दूध तुम दुकानों से लाते हो वो ठीक भी है या नहीं। बहुत मिलावट चल रही है। तुम तो हरियाणा के हो, सुना है वहाँ की गायें बड़ी अच्छी और दुधारू होती हैं। एक काम करो, तुम हमारे लिए किसी अच्छी गाय का प्रबंध कर दो।
3: जी मालिक, कोशिश करता हूँ। वैसे एक गाय है मेरी निगाह में।
4: अच्छा,
3: ऐसी कि साक्षात कामधेनु। दूध भी 15 सेर से ज्यादा ही उतरता है और उसके 200 रुपए तक लग चुके हैं।
4: भाई इतनी अच्छी गाय है तो 10 रुपए अधिक हम दे देंगे। ये लो 100 रुपए, बाकी तुम्हारे आने पर मिल जाएंगे।
3: जी मालिक।
2: दरअसल हीरा सिंह के मन में उसकी प्यारी गाय सुंदरिया ही थी। सोचने लगा, यहाँ आएगी तो अच्छा चारा भी मिलेगा और मैं उसकी सेवा भी कर लूंगा। हीरा सिंह उसी दिन गांव चला गया। जैसे तैसे अपने बेटे जवाहर को समझाया और गाय लेकर दिल्ली आ गया। सेठ जी ने गाय को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। ऐसी स्वस्थ सुंदर गाय उन्होंने पहले न देखी थी। दूसरे दिन सेठ जी ने पास के एक ग्वाले को बुलाया और गाय उसके सुपुर्द कर दी। हीरा सिंह का दिल भरा जा रहा था। उसने सेठ जी से कहा,
3: सेठ जी, गाय की नौकरी पर मुझे ही लगा दीजिए, चाहे पगार कम ही दीजिए।
4: ये नहीं हो सकता हीरा सिंह। भाई हमें तुम जैसा दूसरा ईमानदार और मेहनती चौकीदार कहाँ मिलेगा। तुम्हें तो यहीं ड्योढ़ी पर ही रहना होगा।
2: ग्वाले ने सुंदरिया को ले जाने के लिए पूरा जोर लगा दिया, लेकिन गाय टस से मस नहीं हुई। अपनी भोली आंखों से वो हीरा सिंह को ही देख रही थी, मानो कह रही थी, तुम्हें छोड़कर मैं कहाँ जाऊं। हीरा सिंह ने गाय को थपथपाया, फुचकारा और बोल उठा,
3: मेरी प्यारी सुंदरिया, अब चली जाओ ना, मैं यही तो हूं तुम्हारे पास। तुम चिंता ना करो, अरे मैं तुम्हें देखने आता रहूंगा, मेरी प्यारी सुंदरिया।
2: अनमने मन से सुंदरिया चल दी। लेकिन अगले ही दिन कुछ विचित्र हुआ। सेठ जी ने हीरा सिंह को बुलाया।
4: हीरा सिंह, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? आज गाय का 5 सेर दूध भी नहीं उतरा। तुम तो कहते थे कि 15 सेर से भी ज्यादा दूध मिलेगा।
3: सेठ जी, कल ही तो मैंने पूरा 15 सेर दूध दुहकर आपको दिया था, भला मैं झूठ क्यों बोलने लगा।
4: ये बात तो है, लगता है कुछ गड़बड़ है। चलो कल फिर देखते हैं।
3: जी सेठ जी।
2: लेकिन दूसरे दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। सेठ जी को गुस्सा आ गया, बोले,
4: हीरा सिंह, तुमने सचमुच मुझे धोखा दिया है। गाय को ले जाओ और मेरे पैसे वापस करो।
3: लेकिन मालिक, पैसे तो मैं गांव भेज चुका हूँ और उसमें से काफी मकान की मरम्मत में खर्च हो गए, अब पैसे कहाँ से लौटाऊं?
4: तो ठीक है, पैसा मैं तुम्हारी पगार से काट लूंगा।
2: अब रोज रोज यही शिकायत आने लगी। कभी गाय दूध बहुत कम देती, कभी चारे को मुंह तक नहीं लगाती। हाँ, एक बात जरूर थी, जब हीरा सिंह उसे देखने जाता तो बहुत प्रसन्न हो जाती और चारा भी खा लेती। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से हीरा सिंह को निहारती रहती, मानो कह रही हो, मुझे वहाँ क्यों भेज दिया। एक रात की बात है, हीरा सिंह अपने कमरे में सो रहा था कि तभी
3: सुंदरिया, तुम मेरी प्यारी सुंदरिया।
2: वो अपराधी भाव से उसे देख रही थी, मानो कह रही हो, क्षमा करना, मेरा वहां मन नहीं लगा, इसलिए रस्सी तोड़ कर आई हूँ। मुझे तो तुम्हारे संग ही रहना है। उस मूक गाय की आंखों में वेदना थी। हीरा सिंह भाव विभोर हो उठा। वो सुंदरिया के गले से लिपट कर देर तक सिसकता रहा।
3: अब तू कहीं नहीं जाएगी, हम कहाँ चलेंगे? मैं अपराधी हूं कि मैंने तुम्हें बेच दिया, लेकिन सुंदरिया वो तो तुम्हारे भले के लिए ही तो था। लेकिन अब हम साथ रहेंगे। हाँ, मैं तुम्हें कभी अपने से अलग नहीं करूंगा। मैं सुबह ही सेठ जी से बात करूंगा।
4: आओ हीरा सिंह, कुछ बात बनी? गाय कैसी?
3: सेठ जी, मैं गाय को आज ही गांव ले जाऊंगा।
4: लेकिन उसके लिए जो पैसे तुमने लिए हैं उनका क्या होगा?
3: सेठ जी, मैं उसे चुकाने के लिए मुफ्त में आपकी चाकरी करने के लिए तैयार हूं। रुपए जब चुकता हो जाएं तो मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं भी छुट्टी कर लूंगा। सुंदरिया का दुख मुझसे नहीं देखा जाता सेठ जी।
2: इतना कहकर उसने गाय की डोर थाम ली और कहा,
3: सेठ जी, गाय को गांव छोड़कर मैं आपकी सेवा में फिर आ जाऊंगा और रुपए वसूल होने तक मैं आपके यहाँ काम करूंगा। नमस्ते।
2: हीरा सिंह ने गाय को पुचकारा, थपथपाया और चलने लगा। सेठ जी का मन भी भर आया था। कहने लगे,
4: हीरा सिंह, इस प्यारी गैया के प्रति तुम्हारा प्रेम देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अरे, तुमसे यहाँ मुफ्त में काम करवाकर क्या मुझे पाप नहीं लगेगा? मान लो कि मेरे रुपए भी वसूल हो गए। जाओ हीरा सिंह, जाओ।
3: जी सेठ जी।
4: खुशी से जाओ हीरा सिंह, और हाँ, सुंदरिया का खूब ख्याल रखना, और जब कभी भी समय मिले आपसे मिलने जरूर आना।
3: धन्यवाद सेठ जी।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम सुंदरिया। आशा है कि आपको जरूर ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है मेरा प्यारा दोस्त।
5: नमस्कार श्रोताओं, प्रेरक कहानियों की श्रृंखला में आपका स्वागत है।
6: ये कहानी है पूर्वोत्तर भारत के एक राज्य मेघालय की। लेकिन कहानी सुनने से पहले आइए लेते हैं मेघालय राज्य की थोड़ी जानकारी। मेघालय शब्द दो शब्दों के मेल या संधि से बना है, मेघ और आलय।
5: मेघ यानी बादल और आलय यानी घर, तो मेघालय का अर्थ हुआ बादलों का घर। साथियों, प्राकृतिक सुंदरता में मेघालय का कोई सानी नहीं है।
6: जी हाँ साथियों, यहाँ जब तब अनायास ही उमड़ते बादल, ऊंचे ऊंचे पर्वत, कल कल करती नदियाँ और हरे भरे जंगल पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। गारो, खासी और जयंतिया यहाँ की मुख्य जनजातियाँ हैं।
5: मेघालय की राजधानी है शिलांग। ये कहानी शिलांग की है।
6: यूजीन लगभग 15 वर्ष का एक किशोर है। आज शिलांग शहर के पुराने बाजार में यूजीन चला जा रहा था। उसकी आंखें लगातार दुकानों के साइन बोर्ड्स पर ही टिक रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो वो कोई खास दुकान खोज रहा हो।
7: यहीं कहीं तो थी वो दुकान। कहाँ है वो? अब ये तो रही वो फूल वालों की दुकान। उसके बाद हाँ वो रही।
6: उसे वो दुकान मिल गई थी। साइन बोर्ड पर एक पिल्ले की सुंदर सी तस्वीर थी और उसके नीचे लिखा था पपीज फॉर सेल।
5: यूजीन को कुत्तों से बहुत लगाव था। उसकी बहुत इच्छा थी कि वो भी एक प्यारा सा कुत्ता पाले जो उसका दोस्त बन सके और उसके साथ खेल सके।
6: बात वास्तव में ये थी कि स्कूल में सहपाठी यूजीन के साथ रहने और खेलने से थोड़ा कतराते थे।
5: कुछ सोचकर वो दुकान में दाखिल हुआ।
7: हाँ, यहां से अंदर चलता हूं। अरे वाह, कितनी सुंदर दुकान है और प्यारे प्यारे पपीज भी हैं। आजा आजा।
6: उसने कई बार अपने घर में कहा था कि वो एक प्यारा सा पिल्ला पालना चाहता है, लेकिन उसकी सुनी नहीं गई थी। किसी पशु को पालना काफी जिम्मेदारी का काम होता है। एक पिल्ले को पालने के लिए यूजीन के माता पिता तैयार नहीं थे।
5: लेकिन अब यूजीन बड़ा हो गया है, अब वो खुद पिल्ले का ध्यान रख सकता है। इसीलिए आखिरकार वो मान ही गए। और आज
6: यूजीन पिल्ला खरीद सकता है अपनी पसंद का। यूजीन सीधा काउंटर पर दुकानदार के पास चला गया और बोला,
7: नमस्ते मैडम।
8: नमस्ते बेटा।
7: मेरा नाम यूजीन है, मैं एक पिल्ला खरीदना चाहता हूँ। क्या आप मुझे उसका दाम बताएंगी?
8: देखो बेटा यूजीन, हमारे पास तो ढेर सारे पपीज हैं, सभी नस्ल के।
7: ओह।
8: लेकिन बेटा ये बताओ, क्या तुम सच में खरीदना चाहते हो?
7: जी बिल्कुल, पर आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं?
8: बेटा बात ये है कि तुम्हारे साथ कोई बड़ा तो है नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम बस देखो और चले जाओ?
7: नहीं,
8: क्योंकि यहाँ बहुत से ऐसे बच्चे आते हैं, देखने की जिद करते हैं, सारे बिल्ले देखते हैं और अंत में लिए बिना ही चले जाते हैं। इससे हमारा समय बर्बाद होता है ना, तो।
7: नहीं ऐसा नहीं है, मैं उन बच्चों की तरह नहीं हूँ, मैं सच में खरीदूंगा, आप उनके दाम बताइए तो सही।
8: यूजीन देखो बेटा, सबसे कम दाम के हमारे पास लगभग 2000 रुपए के पिल्ले हैं, फिर 3000 और ऐसे ही। मेरा मतलब नस्ल के हिसाब से और भी महंगे हैं।
7: अच्छा,
8: क्या तुम इतना पैसा दे पाओगे?
7: ओहो, अभी इस समय तो मेरे पास 1500 रुपए ही हैं। अब ये तो मैं आपको अभी तुरंत दे सकता हूँ, बाकी पैसे आपको कल दे सकता हूँ। मैं पापा से बात कर चुका हूँ, वो मुझे मेरी पसंद का पिल्ला लेने के लिए कह रहे थे, आप मुझसे कल तक ले लीजिए।
8: बेटा ऐसे तो बात नहीं बनेगी ना, समझो मेरी बात। वो क्या है कि अगर अभी तुम्हें पपी चाहिए तो तुम्हें पूरा पैसा भी अभी ही चुकाना होगा, समझे ना?
7: ठीक है मैडम, पर आप मुझे पपी दिखाइए तो सही, मैं आपको इसका मूल्य चुका दूंगा आज ही शाम तक। अब आया हूं तो पसंद करके ही जाऊंगा, अभी 1500 दूंगा और जब बाकी पैसे लाऊंगा तब मैं आपसे पिल्ला ले लूंगा।
8: ठीक है। शेल्बिलिन, शेल्बिलिन, अरे कहाँ हो भाई?
9: हाँ जी बताइए।
8: देखो सारे पपीज ले आओ, ग्राहक कब से खड़े हैं, ध्यान रखा करो।
9: हाँ हाँ अभी लाते हैं, बस एक मिनट।
5: थोड़ी ही देर में सामने एक छोटा सा दरवाजा खुला और 5-6 प्यारे प्यारे पिल्ले कूं कूं करते हुए सामने आए। वो ऐसे लग रहे थे मानो ऊन के गोले हों। सब के सब बहुत ही प्यारे लग रहे थे।
6: यूजीन ने देखा कि उनमें एक पिल्ला था
8: जो उछल कूद नहीं मचा रहा था।

0: उसके सामने के दोनों पांव तो काम कर रहे थे, लेकिन पीछे के दोनों पांव घिसट रहे थे। वो धीरे धीरे घिसटता हुआ सबसे पीछे पीछे आ रहा था।
1: अरे शेल्बिलिन, तुमसे कितनी बार कहा है इसे मत लाया करो। तुम्हें ये छोटी सी बात समझ नहीं आती क्या? तुम फिर से इस पिल्ले को ले आए, हटाओ इसे।
2: ये तो बहुत शैतान है, पीछे पीछे आ ही जाता है। अभी ले जाता हूँ इसे, चलो शाबाश, वापस चलो।
3: एक मिनट, अब इसे क्या हुआ? ये ऐसे क्यों चल रहा है? आजा आजा, इधर आ।
1: ये जन्म से ऐसा ही पैदा हुआ है, सही होता तो इसकी बहुत कीमत होती, अब तो बोझ ही है हमारे लिए।
3: मैं इसे खरीदना चाहता हूँ, कितनी कीमत होगी इसकी?
1: हैं? अच्छा, समझ गई बेटा, समझ गई, मुझसे मजाक कर रहे हो ना? अरे ये देखो, ये वाला कितना सुंदर है। महंगा तो है, लेकिन दूर दूर से लोग आते हैं इस वाले पिल्ले को खरीदने के लिए।
3: नहीं, ये नहीं चाहिए मुझे। वो वाला कितने का है?
1: अरे बेटा, कैसी बातें करते हो, ये बेकार है। अरे बिन पैर का पिल्ला, बहुत से लोग आते हैं इस दुकान में, हम तो इसे छुपाई देते हैं।
3: क्या?
1: वैसे भी ये भला किस काम का, कौन खरीदेगा इसे?
3: मैडम, मैं खरीदूंगा इसे, मैं ऐसे ही खरीदूंगा।
1: मगर क्यों? तुम्हें पता है ये तुम्हारे साथ खेल नहीं पाएगा, तुम आखिर इसे क्यों खरीदना चाहते हो?
3: मुझे यही चाहिए।
1: देखो बेटा, मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम अभी जोश जोश में ऐसा कह रहे हो, शायद इसकी हालत पर तुम्हें दया आ रही होगी, है ना?
3: नहीं।
1: लेकिन सोचो, कुछ ही दिनों में अगर ये बीमार हो गया तो तुम इसे सड़कों पर या कहीं और छोड़ दोगे। और देखो, अगर ऐसा हुआ तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा।
3: जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा इसके साथ, मैं इसके साथ कुछ नहीं होने दूंगा। ये अपने इन्हीं कमजोर पैरों पर चलेगा, चलेगा ना मेरे साथ, बनेगा ना मेरा दोस्त। अल्ले।
1: अच्छा ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो फिर इसे यूं ही ले जाओ।
3: यूं ही?
1: हाँ, अब इसकी भला क्या कीमत?
3: क्या मतलब? अगर इसकी टांगे खराब हैं, तो क्या इसकी कोई कीमत नहीं है?
1: अच्छा, समझी, स्वाभिमानी हो, मुफ्त में कुछ नहीं लोगे, अच्छी बात है। तो ऐसा करो, इसके तुम बस 50 रुपए दे दो, खुश?
3: 50 रुपए क्यों? ये तो इसका अपमान हुआ ना, इस नस्ल के दूसरे पिल्लों की जितनी कीमत है वो ही इसकी भी है। मैं आपको इसके पूरे पैसे दूंगा।
1: पर बेटा ये तो
3: बताइए ना, इसकी नस्ल की कितनी कीमत है?
1: बहुत महंगी है, अब 2000 रुपए, मेरा मतलब है कि।
3: तो यही इसकी कीमत भी है, अब ये रहे 1500 रुपए। और अब ये मेरा हुआ, मेरा दोस्त है ना, मेरा दोस्त तू, यूजीन का दोस्त, तुम्हें शाम तक ले जाऊंगा दोस्त।
1: देखो बेटा, मैं तुम्हारी भावनाओं और जानवरों के लिए तुम्हारे इस प्यार का बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन बेटा क्या मैं जान सकती हूँ कि आखिर तुमने इस पपी में ऐसा क्या देखा कि तुमने इसको ही चुना, वो भी इतनी कीमत देकर? आखिर क्यों बेटा?
3: आप पूछते हैं क्यों? ये देखिए मैडम, ये देखिए।
4: यूजीन नीचे झुका और उसने धीरे धीरे अपनी पैंट ऊपर उठाई। दुकानदार ने देखा यूजीन का बायां पांव घुटने से कटा हुआ था, नीचे का आधा पैर कृत्रिम था, वहां

0: भूतू का पांव लगा हुआ था, जिसके सहारे वो थोड़ा मुश्किल से लेकिन बिना सहारे के चल सकता था।
1: अरे बेटा, ये तुम्हारा?
2: जी मैडम, आधा पैर नहीं है मेरा। अब बताएं, मेरी क्या कीमत है आप जैसे लोगों के बीच? मैं भी इस पपी की तरह कूद नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, तो हो गया ना मैं भी बेकार बोझ।
1: अरे नहीं नहीं बेटा, कैसी बातें करते हो, वो तो मैं बस
2: मैं भी मौका मिलते ही सबसे खुलना मिलना चाहता हूँ, लेकिन शायद मेरी ये कटी टांग ने मुझे सबके बराबर नहीं होने दिया। और 5 साल की उम्र से जानता हूँ मेरे साथ कोई नहीं खेलता, ये सब मैं जानता हूँ, ये सब मुझे पता है
1: बेटा।
2: इसलिए मुझे लगता है कि ये पापी मुझे मेरी कटी टांग से नहीं पहचानेगा, मुझे मेरी दोस्ती और मेरे प्यार से पहचानेगा। मैं नहीं चाहता ये अभी से मेरी तरह आजादी को, प्यार को तरसे। आज से, अभी से ये मेरा हुआ। आजा मेरा दोस्त, आजा।
1: यूजीन बेटा, इस पपी को तुमसे बेहतर भला कौन समझेगा, और शायद ये किसी और के साथ उतना प्यार भी ना पा सके जो इसका अधिकार है। इसे तुम्हें सौंपकर मैं भी निश्चिंत रहूंगी। ये लो, ये अब तुम्हारा हुआ, लो।
2: आजा।
3: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम मेरा प्यारा दोस्त, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत को
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

भद्रायुवेदसे रघुनाथायु नाथायु सीतायां पते नमो नमो। श्री कैलासवती सदा शिव नहाय तौ देवी सातकांड रामायण उत्तराकांड की मनु मसी दगदनी दशग्रीवो लंका गिराबो न मरोलहुम जोईतौगे हबगीदमक दिग्विजय लाख मतांग सिदगतनी सरगगी जमालोय जोंगी लेपाक जोईतौरुरे नफन मयाई कारी जगत लंबा कना ले रोय ब्रह्मा की बोर फंगवा दशग्रीव लंका रावण मरोलहुम जोईतौर गे सिम पुनिंग लेपदना पतान मई गई तमक पनी वासुकी की जगाद संगी वासुकी जोईतौ गे लानगी अरे बार पाऊ बीघरे लंका रावो लालताबद वासुकी शौबद योघर बोरे देना हाय हाय लंका रावो नफन मयाई कादन तेंगोन घर बोरगा वासुकी लान जोई लौनी लाइब रावोन नठवाई लौड़गे तेंगोन तुम नपरा लौड़गे देना मरे पाकी नाग ठेगोन पर नमक साजो लांगे हरे रगा मरे ली सिंह पान बा मत्रो चाम पान घरवा लिंगी जात अमुमु काम थुर को हुदन जगत मरो लहुम थुमर पंगंबा जगत मरो लहुम लोई नमाहन मंगंबा बासुकी की तेंगोन पर नमक सिना लंका की राबों की तेंगोन पर नमक सिन लोई रेगी हेबे की मतागोम मैं गई तराद कोई शिले हरे रगा लानमी कया सिन नहीं खाई रख पाऊं लिंगी हूद खांग मंगम दर्दन लावो राबोन की तेंगुन पुन मक्सिना हाँ कार लाव दन मै गई सलाई खंग दन सियन रख पसे राबोन उबद करम नो मांगे ना लिंगी तेंगुन मायो न बंगम दर्दन तेंगुन एक लानमी पुन मकाय दन सियले अदु बुकाय दाउरु देगे लानमी तेंगुन पुन मकाय दन सियन घर सुओ लिन्याम लोई न मठवाई लोड़गी दन दशगिरी बाओ लंका हिराबोना तेन पुन मक्षत तना हिज भी पुनः मगथा दन लिन की जान से स्वयंदा छोड़े तन था ढरक पाऊं लिन याम पुनः मक्षे रावण की तीन ये मशाल द खांग मंगम ददना काय काय दन सेन रावो मतम मसी दगतनी बासुकी ने यारो इधरी न लंका रावण सिद्धि हेंजल ले न करम नो मसी दी जान कुप्तन लांग न फाद भय यारो इधरी देना बिशो जान रावणु फार गे देना रावण की मैं कही द बासुकी ना शरह तम झलक पा आरामोन मयागी लान दी मागु म लंबा बिन बले बन दे दो बासुकी की जान कु की तारे देन मयागी सतीना बासुकी की जान की थके नन तो एरगा मयागी जान बासुकी बुडन गंगा लान भोंगी आइदा थके नम दन राबोन हि फावनी म कल्लब बासुकी निंग धौ दो

0: 여러분이 마약에 잔 없던 해파를 없이더디 우파일리트라도 링우울펑엄들에도 봐줄게 우파일리렉 들어보면 땀마시더디 잔내기 난토펑엄마루이와시 강하더나 봐줄게 닝더 알아본다 마이티리 해드네 성절이 마이티리 해버려야지 알아보는 조이더니 싱하나다 제이제이 하는거 우리는 조이와이래 파롱 해달라오더나 바수키 마리팍 조이또로마가 마드럭대기 보고버티 마이게이 방학더나 마리 리싱판 그러버 마트루 리싱판 그러버 린길레이팍 가야시에 마탕마탕 알아보는 조이또로에 마푸닝더 마야이카르에 마사드 아키브 파우럭드레 싱너블레이트레 파탈레이팍 로이나 조이또로덤니 린길레이팍 푸나막 로이나 넘버덤니 카라이더 랏 마탕 성시게 니파트 ki hebelai basida langkai rabon yorene nipata ki leba he yorok padani dasagi ni langkai rabon lan gi pau he the pigi langkai rabon dikbi joi lai lan thene si nipata arang bhumi the lan thodor o kiragana arabol ingon the sangjara ra bhalo bhalo arabon gi wata the morol hum lamba bin balai taba Brahmagi board of Hungaba Jagat Lanham, the Mama Electoraba Nipata Lankaira won you are heed of the near Mother Doid, Mahapapi, the Sigriba Lankairabo. My eye card and a nungna Nipata, I will my own need and a life to dear Natai Mangjer again and a Nakong and Namang Tiva Lakbaba the two avoided. Pay pay Lankairabon. Let him out! Must see Nipata Gun Kangal again. Nipata Tingun Sajo Langi Hedinaga. Arabo Lambar Tinner again. Dolai Gada Gada Gada Gada Gada. Gay Gay! Toburuk was here. Arabo Nimang the Mukamuki. Mayunga than a sow. Hedalib Narak. Akanbani. Mayunga than a lipiraga. Tinung Piraga. Madruk the Linung Piraga Tinung Septanarak than a thumbnarak pong. Tengnerak pang, yanerak pang, perlu jilani akan bani ntengneri balansi. Angak bani nipata, Brahmagi boleh pengawa maru lohum tu lambabi n balai teraba. Yang n bapanmang tu misi n palap lelak teraba. Nipata, Arabun sorai bani nikusai garbada janmoi bani. Bisho sarwa Brahmun gi masani polos degi masune. Inai guru gi paramasisoi garaba puno magtigi hindukna. Brahmagi bodh phangawa langkai rabon. Anishin madruk da tenung sipta nareraga. Amanamabu pral loge amanamabu matwai loge edana. Tamna naiva tin gi jala se tenaga ten mai ga ten jin ga ten koka. Kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri inna dana. Thana naiva tamna naiva tin gi jala. Nipata. Kaidorude degi dasagini bol langkai rabon. Mang tara kaktana thadharagi edana. Ten tara lirinam dana tenga dhongir garabon gi meke ida. Salhe tamjhalakpa dasagini bol langkai rabon ju arai bani paan de do. Madruktani mapamum tarana lirung tara pairim ni. Tenung degi mapamum tarana amuk amuk salaga tam dhorakpa. Ten tara tarana khujing oira ga tamai ba. Nipatan mang tara kage makuk tara kage edana tamai ba ten tara do. Arabon gi ten kap amukta soidak tana thadharakpa. Ani na thengnari balala si praloigi judhani patalai paksa nik tana khang bani isingi jige punamaksi mang batari edala hakkar launa ghibani maigai salai khangdana sena ghibani mange mange karam no jagat lambabi na balai taraba ani ki lala si di praloigi judha oirena jagat mang batakhar oirena Nipatak hanbal erektar baniya. Langkai rabun hinadu mayai karak baniya. Nipatak akan mthaunaga loyna na sokthava naidana. Langkai rabun na ngamdava yadey. Rabulegi tig pijoy mai thiva yadeyadana. Madrukta thengna naiv anigi lalashiye. Ekkama sho. Thama. Akan mani na lamba thengna rapashe. Aman ngamdi. Aman ngamdi. Thama shumna lan thengna raba. Patalai bak nik. Tena khanga apa isingi jiwa puna matwai mang batara apa Brahma ki sristi kai bagi mami ulaba matamma sidak tani Brahma Dewa swabhaga loi nere heri raga Arabo ni partak ani gillan bhamda Ling dar e sristi karta Brahma Nipata yenge raga ha ha ha nipata नंगलमा फारी बरा बोले बनी पासी अराय बनी पानते मरोल हम तो लंबा अभी न बले तब नी सरगा मर्त पतान जोई तो गे लाई बनी पानी अदु इस मसत्ता अरा बोल आएगी बोर भंग बनी पानी ब्रह्माइन बोर बीहर बनी नन तराय न लहाट पे यारोय तराय न जोई लोग यारोय अदु ना लाले पु जगत मांग बतारे ब्रह्मा आइन हाइरिब सिनी खुलाई थाद ओ अराबुन की नक्त मुख संग दन ब्रह्मा न हा हा हा है राबुन अराबुन ही बुद्धो मांगे न जग सी मांग बतारे न नहुए निगे लान सी दे दिया नंगुम न थाउ नाले वन निपार तंगी नंगुम न इबुद्धो की बोर भंग वन निपार तंगी अदुन ने नहुए निदि लंबा शाने लंथेंग नब अमन अमु माइ थी पीब गम गदब नती लंबा सावन हुए निधि लंथे नगदब नती ने रावण इवदौन हाइरिब सिनी खुलाई था दो अकन बन हुए निधि मरुप सानगदब नी जगत फनन बगी दमक खुलाई था दो आलिंगुल होयु नबनी मरुप सानो सृष्टि करता ब्रह्मा युवा कनान हितु उदोरिब निपातक इवदहो अराबों से इवद हो इवद होगी या थंग अक्षरे अकन बनी तो अकन में लंबा पारम देगी खुलाई छठाट एक तो थम न ले रखा पंबुम थिंग होक तो नहीं था लंगई मरुप साना रसी नहीं देना निपातक लंकाई राबों आलिंगोल उइने देना मरुप साना घरे दशगीर बाल लंकाई राबों निपातक मरुप साना रबनी ना दिख भी जो इसल उबगी लम क्या आदा कल कल थोड़ा थोड़ा हिरे हिरे निधो कया मायुक न रूबगी अवाब पोथाब निपात मागी मरुप की लेपाक सीधा एक बसरा सही मा अराबोन सी पोथार गले सही मा मरे पाक लंका दले बदगी हे न थोइन नुंगाइना मागी मरुप निपात की लेपाक सीधा पोथाद न लेरक बदगी लान सलुबगी अवाब पुनमक तो देखल आवाक अनुब मपांग लेरा वा मतम मसिदक्त लंकाई राबों दिये शुमायन पधारग लेवी आव मतम दी नत्ये मिगी पृथ्वी मरो लहुम सर्ग मर्द पतान जोई तोगी हवे की दमक दिख भी जोई लाइव नी पानी ना मपांगन मपुंग भारावा लानी सुख भव लेरक तरव मतम मसिद दिये मखाता ना दिख भी जोई सलगे पता ले बाक योरे ने लो इन गंदब या दे अराबोले गुन खंगलम दब या दे है देना अराबोन नी पार्थ की माई गई सी देगी अमुन कनाग लंबा पास ही गया अदुर दी बरुन लंबा ठेने रुर गे देना बरुन की जगा सी दा लान संगक पनी बरुन की जगा योरक पदा सुरभी गो मता ठेने सुरभी गो मता की खीर देन लेपले देन सिंधरंब इवीम की खीर देन सिंधरक पर लेप तबना खीरो द सागर ओई देना पाक्षन संतुवगा निंग निंग निंग निंग निंग निंग लाउन ले घिरीबा मेहु साव पुक्षेन पीपल लंकाई रावन मधु उरबदा मपुनिंग द कलक पर फाउर आदन माई ओइनिंग आदन हे इवेम जगत माता सुर भी माता हौजिक अराबो ननाइन लाइव से पता ले बाग से दिक बिजोई तोगी हब की तमक लक्षबा अराबो नी ननाई राबुन मंगोन पिन बीयू हौजिक सिदा लान से जोई ओइरवे की तुंगदा इमा बुने ननाई न लंका सना ले बागता सोई दना पुजगे ननाई वो मंगोन पिन बीयू ने जलनी मिहो सोब राबुन की वही दो सुरभी मतान है ताबद इवी मदो नापल दुद कलक मिहो बुदु ऊवदा अराबुन माई ममांग दिगी अंतर ध्यान हुई देना सुरभि गोमता सरहिक तो मांग ही बनी सुरभि गोमता इवी मन अंतर ध्यान हुई गर्व सिद्ध दिए अराबोन से लान पारा पारा पारा पारा पारा सिंह द्वार है तो यौरक पर बरुंग सिंह द्वार से यौरक पर हा हा द्वारी छा कोलुंग मनुंग संग लंका की राबोलाई लालाई लान थे न सी रंग भूमि द खुलाई पाए द न साजो लांग अगर लान थोड़ो र ओए द ना नरे पाकी बरुन महाराज द हाइरू अदुगा लान थे न बकीर बा 알아볼래 온데 상전하라오 하이래 이해되나 란기 파우시 피루 알아보니 와루 다바드 도아리 신도네 헤드 세그리 블랑카파티야 마하라지 디 코눙 문웅데 레이테 링 토크리 나나이 코데 레이 팍 시나르미 마사싱다 코눙아 나바 바르 시나르미 아두나 란 파시아 블레르게 디 도아리 코데 란 파시 나트라가나 마사싱 란 땡네 비우니 데세그리 방 아라보나 발로 발로 나리 파기 코눙데 상아가 나리 파기 닝도 란 테네기 데네 상아이바 아라보레 이거 보고 쉴레 들어봐 통아이 브 다리 다리 노이가 란 파시 와두데 페이 나 트와이로 이러게다라 다리 신두고 라본가 나 란 테나 방 아라본 마이 마망데 다리 신두는 레 불라우디 넘나 담니나 다리 신두 쇠이다 ลาลากดวาริสิงลัมมาปารากดวาริสิงมะทวายลอยนะลอกเรบเสียบรุนกิมะชาฮุมดรอนพุสกะราฮิรัมเบียฮิรัมบะอะฮุมเนปาวจิฮะตาวดดิไฮไฮไคดอรุเตเกียปาบุงเนอิริปาคตเลบิดระกะชุมะไซคอยนะไรจะบาฮาระปูรีนาลาลากะกัมดุกะกัมดุกไบดนาไคอยนะทัวกะเชกะไมกะงางะดะบิดา Dwari gebulan tena raga dwari loi na pral log re hawa du dia. Kai doru de gi lang kai rabun pral log de bayade. Barungi masani pa hum drone puskar hiram ba. Kudak to sajo lang e raga. Donai kada kada kada kada kada kada de thau dorak tena. Arabun mai gai hum de koi re raga. Ahai de segri balang kai rabo. Nang masidi na thwai lo batari e dena. Madurak to ni barungi ni pa masani pa hum ga dasagri bo. Lankai rabon ga perlu gi laun si teng na rak pasi da segri ba lankai rabon lidung tara ma pamum tara ma na pair ga lem hori ba ma pamum tara na tenung de gi abu mung sepeda tin tara tara sale ra ga amu mung tama pada tin tara tara tara tara na khujing oi da na cha cha cha cha ara bun tam thali ba tin nyam pun mung si barun gi masani pa hum na ngak pa ga mukta ba kala si dak tani karam no da segri ba lankai rabon lamba pa ba ga moi dori na si dia ಅದುವರೆಗೆ ಮಯಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಯಾಗಿ ಲಾಲ್ಲಾಂಗ್ ದಯಾದೆ ದೊಲಸಲ್ ಹೇಗ್ ಸುಂದ ತಗೊಳಪ್ಪನಿ ಲೇಸಿನ್ ಕೊಂಜಲಗ ಲೇಸಿನ್ ಗಿ ಮರುಮ್ ಸಿದ ಮಯಾಗಿ ಲಾಲ್ಲಾಂಗ್ ದಬಗಿ ಬರುನ್ ಗಿ ಮಸಾನಿ ಪಾಹುಂ ದ್ರೋನ್ ಪುಸ್ಕರ ಹಿರಂ ಬಸಿ ತುಮ್ಮಿನ್ ಲೇಸಿನ್ ಮರುಮ್ ದ ತಾಸಲಗ ಲೋತನ ಲೇಖೇಬ ದಸಗಿರಿ ಮಲಂ ಕೈರಾವ ನಂಗಾಂಗ ಹುಂ ದ ಪ್ರಾಲ್ ಮಂಗ ಮಯಾರೆ ನಾ ತಂಗಿರಿ ಬತ್ತಿನ್ ಫನಯಾ ಮೇನಾ ಕರೈ ಲೇಖರೆ ಪಾಪಿ ಹುಂ ದ ಅರಾಬೋ ನ ತೆಲ್ಲಕ lepaga anang hongi megi derabun le deling pabu le nang derini humdo madu wer rabun mahapapi kada id le ghere dana arabun gi pusparth dolai kha da le dana thiram bade gi phangak torabada sundarabun su pusparth dolai tonga ga shane thogalak pa le sin gi marumda ahumdu na tas laga ಮಯಾಗಿ ಜುದ್ಧ ಲಾಂಗ್ ಡೋಗಿ ಲಂಜಾದನ ಲೇರಂಬಸಿ ದಸಗಿರಿ ಬೋಲ ಕೈರಾಬನು ರಪ್ಪದ ಭಾಲೋ ಭಾಲೋ ಆರಾ ಬೋಲೆ ಒಂದು ಮಯಾಗಿ ಲಾನ್ ಥೇನನಿ ಮಯಾಗಿ ಲಂಜಂ ಸಂಗ್ನಿ ಗಗಾಯ್ದಲ್ಲ ಖಂಜರಗ ಲಂಜಾದನ ಲೇರಂಬ ಮಹಾಪಾಪಿ ನೋಯ್ ರಾಬೋಲಿ ಗುನ್ ಖಂಗ್ ಲಗೇದನ ಮಿಗಿ ಲೇಸಿನ್ ಮುರುಮ್ ದ ಲೋತನ ಲೇರಿ ಬಾ ದ್ರೋನ್ ಪುಸ್ಕರಿ ಹಿರಂಬ ಅಹುಮದೋ ಆರಾಬೋನ್ ಗಿ ತೆನ್ ಕಾಪ್ ಅಮುಕ್ತ ಯೈ ಯೈ ದನ್ ಹಾಬು ಸುಂದ ತೇನ ಎನ ಥಾಬದ ಸುಂದ ಲೈಬ ಅಮುಕ್ತವದಿಗೆ ಅಹುಮ ಸೇದನ ಹಾಯ್ದರಪ್ಪ ಲೈಮಾಯ್ದ ಉಫುನ್ ಮರಕ್ತ ಗರಾಗರಿ ಓದನ ತಾವನೆ ಪಂಗನ್ ಯಾವ್ದರಬ ದಿಹೆ ಖಿನ್ನ ತಾ ಓಯ್ರಬ ತೀನ್ಗಿ ಮಶ ಖಾಂಗಿ ತಂಜಾಸಿದ ದಿಯ ಅರಾಬುನ್ಗಿ ತೀನ್ಗುನ್ ಮಯಾಮ ಸೇ ಗೋರು ಹುಪ್ಸ ಲಾಗ ಅಹುಮ ಸೆ ಪಾಸ ದರಿನ ಕರ ಕರ ಕರ ಲಾಕ್ತನ ಮಖು ಮುಖುಟ್ ಪುಲ್ಲಗ ಅರಾಬುನ್ ಗಿ ತಿಂಗುನ್ ಪುನ ಮುನ ಜೋಯ್ ಧನಿ ಸಿಂಹ ನಾದ ಐವು ಹರ ಗೌರಿ ನ ಜೋಯ್ ಓಯ್ರೆ ಜೋಯ್ ಓಯ್ರೆ ಎತ್ತ ಲೌರಿ ಅರಾಬು ಬರಂಗಿ ಮಸಾನಿ ಪಾಹು ಮೈಥಿವ ಪೀವದ ನಪನ್ನ ಮಯಾಯ್ ಕಾರ್ ಎ ಕರಾಯ್ ದನೋ ಲೇರಂಗದ ಬರುನ್ ಮಠ್ವಾಯ್ ಲೌರಗೆ ದನ ಲಂಕಾಯ್ ರಾಬುನ್ ಬರುನ್ಗಿ ಮೈಗೈ ಥಿರಪ್ಪ ಮಧಮದು ದನಿ ಭಾಸ್ಕರ ಮಂತ್ರಿ ಶಿಶಂಗ ರಾವೊಂಡ ಹೇ ದಶಗಿರಿ ಬಾ महाराजन होगी कोनुंग मनुंग सिद्ध फने याम न महाराज थी भी रगस हो महाराज दी थिंगनर रोई ने महाराज इरे पाकी महाराज दी ब्रह्मलो की नुआई भी इसे नुंसी भी सोरा ये उधर पुनिंग पिंबा पेन बा अब सरी के आगे जब इसे ये गनी तागनी है भी किधम अगता ब्रह्मलो तो लिंग ही ये दस गले बा बरुन ब्रह्मलो तो ब्रह्मलो की जब इसे ये मसत खी अरावोन तावड़ा फाक फाक फाक फाक फाक अरावोन नुएरगा हाय हाय हे बरुन जगत परमंदे की मग मनुंग दा जगोई है बार दी रावोले लंबा भी न बले बन ते इपामुंग कुन्न ठेक ना नौ न जगोई सावड़ा सिद्ध लेते न सावंग अंबा इसिन तारा न सकपदा सूर कायदा इपोम नायदा ना इसे ही सकपंग अंबा आरा बोले उन्हें कि नंग नहीं सही तो करी है ना पुनिंग संग दला जगो इधर करी है ना थोड़ा याव रहा दला आरा बोले ना लान पागे दना लाल लागा नंग ना लाल मायूं ना बकिये दी है निंग दला सर के कि जगो इन नुआई में ये मसली ब्रह्मलोक की नुक्सी में सही ताबत सली ककाय दना नंग ना आरा बोले वो मिनम बदिये पै नरे पक कुनुंग मनु होगी अरे वो मानसांग सना लुपाल वही ना लुट्टोरो नहीं है दला दस गरीब लंका रावो न बरुंगी कुनुंग मनु ने संग ऐरगा मधुर तो ममन यामा यामा बहिरा रोतोन मनी मुक्ता सना लुपाल ले गरीब मयामसी लंका रावो न मनाई तिंगुन मयामसी को लोई ने ऐरगा लोई ने कुंगत तन लोवन बरुनगी का बरुनगी जगा संग पद बरुनगी सज्जा मथकता नाग पास खुलाई ले रंबदो अरावुन एक उरु बदी भालो भालो बरुन महाराज लान थे नब फंगदरब सुओ मयुग नब फंगदरब सुओ मरे पाक कुनुंग लुट्टोरे मागी मतिक सारब जगत कना लंबा भी न बले तरब नाग पास खुलाई फंगे ना अरावोले माई पाए ना अरावोले जोई होए ना मददनी अरावो नाग पास खुलाई हे फंग बदा मत्वाई पेंज हरद ना लारां कायरावोन कोनुंग मनुंग नेगी थोल ए रगा लंका अरावो न मदरुतनी मुख तारा न लंका आगे रावो ना पता लाई बाग सिंधु न तार सनो हवे की मत आगुम ना अरावो न जोयो इरे ऐवो हर गौरी न जोयो इरे जय जय हर गौरी न जोयो इरे पाऊं है तो लाउडी हर गौरी न जोयो इरे देना रावो ना शिगना न शिपाऊं है तो लाउडी रगा अरावो बरुंगी माई गई सिद्धिये नापन माया कार्य दो पता ले बाग से योरेंगे द अरे वो मखई लंबार मगे ठेंग न वो मखई जोई लोर गे नापन माया कागर द नलंकाई राबों से मशाद अकी वो म पोलक तरे म पुनिंग द सिंग न वो म पावरक तरे लेरम लेरम बल लांधेंग न र दमने ठेंग न ठेंग न बल जोई लोर दमने कई दो रूदे गे सिद्ध योगे दन बली गले पाक योनो न बा दशकरी बल्लंका इराबों सी दोलाई गदा गदा गदा गदा गदा गदा गदा गदा अराबो बली गले पाक योनो न बतोड़े बली गले पाक शी योरा बत तंजा सी दक्तनी परस्त थारे रगा परस्त सिरो सिंह द्वार दा समय न राबोले लालाई लान थे न सी थोड़ो लंबा पाव मयुक नव कीवल लेरग नरा बोलेंग द संजर रा होय द ना आरा लान गी रे बारा मदुक सिंह द्वार द पीर फनी महाराज जाय द ना परसन परा परा परा परा परा सिंह द्वार योरक प बली गी सिंह द्वार योरक प काल सि दक त दी जगत कि मबु मो श्री नारायण श्री विष्णु ना मधुरुक सतुर भुज होय द ना शंख गदा पद्म चक्र खुलाई मरी थोले रगा बनमाला न लेतेंग रग पैसा द कोस्तव मनि न लेतेंग बा मधुरुक मनाई मसन मयाम ना कनाई सामर थवन द ना मगुन्ना कोटि सूर्य देव न गान बगुम ना मधुरुक लेरम बसी परस्त न उब द दिए शिव शिव सिंह द्वार द सीयू न मगुल लेव निपासी न गाई बांग बरुन महाराज दगी लागा लांथेंग न दौरी नियेदना ऐ कोई महाराज न लान संग दौरी बांग ꯕꯂꯤꯒꯤ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯕꯂꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯒꯨꯟ ꯂꯩꯔꯝꯃꯒꯗꯒꯦ? ꯀꯔꯝꯅ ꯂꯥꯟꯀꯝꯗꯧꯅ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯒꯗꯒꯦ? ꯄꯥꯔꯁꯇꯗꯨ ꯀꯤꯕꯣꯏ ꯁꯤꯡꯅꯕꯣꯏ ꯄꯥꯈꯠꯄꯣꯏ ꯁꯤꯡꯒꯗ꯭ꯋꯥꯗꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥꯍꯩꯃ ꯍꯥꯏꯔꯝꯗꯅ ꯄꯔꯥ ꯄꯔꯥ ꯄꯔꯥ ꯄꯔꯥ ꯑꯔꯥꯕꯣꯟꯒꯤ ꯅꯥꯛ ꯌꯧꯔꯦ ꯃꯍꯥꯔꯥꯖꯕꯨ ꯅꯅꯥꯏꯅ ꯔꯥꯏꯕꯥꯔ ꯑꯃꯇꯪ ꯄꯤꯒꯦꯅ ꯆꯪꯖꯔꯨꯕ ꯁꯤꯡꯍꯗ꯭ꯋꯥꯔꯗ ꯃꯒꯨꯟ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕ ꯅꯤꯄꯥ ꯑꯖꯥꯅꯨ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯧꯁꯇꯕ ꯃꯅꯤꯅ ꯊꯕꯛꯇ ꯉꯥꯟꯕ ꯀꯪꯍꯥꯏ ꯁꯥꯃꯔ ꯊꯧꯒꯟꯗꯅ ꯃꯅꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯦꯕꯥ ꯂꯥꯡꯕ ꯕꯅꯃꯂꯥꯅ ꯊꯧꯒꯟꯕ ꯑꯃꯝꯕ ꯅꯣꯡꯒꯤ ꯀꯨꯆꯨ ꯒꯨꯝꯃꯕ ꯖꯒꯠ ꯃꯔꯣꯜ ꯑꯍꯨꯝꯗ ꯂꯝꯕꯥꯕꯤꯅꯕ ꯂꯩꯔꯣꯏꯗꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯤꯄꯥ ꯑꯃ ꯊꯣ ꯉꯥꯒ ꯂꯩꯍꯧꯔꯦꯅꯦ ꯃꯍꯥꯔꯥꯖꯕꯨ ꯂꯥꯟꯁꯤꯕꯨ ꯀꯝꯗꯧꯒꯗꯒꯦ? ꯑꯔꯥꯕꯨꯅ ꯁꯤꯕ ꯁꯤꯕ ꯄꯥꯔꯁꯇ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯆꯒ ꯂꯝꯕꯥꯕꯤꯅꯕ ꯂꯩꯇꯔꯕ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯔ ꯆꯥꯔꯕ ꯃꯒꯨꯟ ꯂꯩꯔꯦ ꯂꯩꯔꯦ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯌꯥꯗꯣ ꯖꯣꯏ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯖꯒꯠ ꯀꯅꯥ ꯀꯤꯔꯨꯗꯅ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯂꯪꯀꯥꯒꯤ ꯔꯥꯕꯣꯅꯤꯅꯦ ꯄꯥꯔꯁꯇ ꯐꯩ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯨꯒꯦꯗꯅ ꯗꯁꯒꯤꯗꯨꯕ ꯂꯪꯀꯥꯏ ꯔꯥꯕꯣꯟ ꯁꯤꯡꯍꯗ꯭ꯋꯥꯔ ꯇꯝꯅ ꯄꯔ ꯕꯔ ꯕꯔ ꯕꯔ ꯕꯔ ꯕꯔ ꯍꯦ ꯃꯍꯥꯕꯤꯔ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯅꯪꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯕꯗꯤ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯕꯔꯨ ꯂꯩꯗꯣ ꯂꯝꯕꯥ ꯄꯥꯒꯦꯗꯅ ꯂꯥꯟ ꯊꯦꯡꯅꯒꯦꯗꯅ ꯂꯥꯛꯏꯝꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯤꯡꯍꯗ꯭ꯋꯥꯔꯗ ꯅꯪ ꯍꯥꯟꯅ ꯉꯥꯛꯇꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯝꯅꯤꯅ ꯅꯪꯒꯩꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯝꯕꯥ ꯄꯥꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯔꯥꯕꯣꯟ ꯀꯩꯁꯨ ꯊꯧꯔꯨꯗꯦ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯤꯔꯨꯗꯦ ꯖꯒꯠꯀꯤ ꯃꯕꯨꯡꯅꯤ ꯈꯜꯂꯨꯗꯦ ꯃꯄꯨꯅꯤꯡꯗ ꯁꯤꯡꯅꯕ ꯃꯆꯦꯠ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯗ ꯃꯁꯥꯗ ꯑꯀꯤꯕ ꯃꯆꯦꯠ ꯑꯃ ꯄꯛꯇ ꯁꯤꯔꯅꯔꯥꯒꯤ ꯃꯥꯡꯗ ꯅꯥꯄꯟꯒ ꯂꯣꯏꯅꯔꯒ ꯍꯦꯛ ꯉꯥꯡꯉꯨꯕꯅꯤ ꯖꯒꯠꯀꯤ ꯃꯕꯨꯡꯅꯤ ꯃꯍꯥ ꯄꯥꯄꯤꯗꯨꯒꯗꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯅꯤꯡꯗꯕꯅꯤꯅ ꯁꯤꯔꯅꯔꯥꯜ ꯏꯕꯨꯡꯅ ꯂꯪꯀꯥꯏ ꯔꯥꯕꯣꯟꯗ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯦꯒꯦꯕꯨ ꯍꯦꯛꯇ ꯁꯦꯒꯤꯔꯤꯕ ꯂꯪꯀꯥꯏ ꯔꯥꯕꯣꯟ ꯅꯪꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗꯨ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯕꯂꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯀꯣꯇꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯒꯨ ꯂꯩꯕ ꯖꯒꯠ ꯃꯔꯣꯜ ꯑꯍꯨꯝꯗ ꯂꯝꯕꯥꯕꯤꯅꯕ ꯂꯩꯇꯕ ꯕꯂꯤ ꯃꯍꯥꯔꯥꯖ ꯂꯝꯕꯥ ꯄꯥꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ? ꯃꯥꯅꯤ ꯃꯥꯅꯤ ꯃꯍꯥꯕꯤꯔ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯍꯥꯔꯥꯖꯒ ꯂꯝꯕꯥ ꯁꯥꯔꯦꯗꯅ ꯂꯝꯕꯥ ꯄꯥꯒꯦꯗꯅ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯤꯕ ꯕꯂꯤ ꯃꯍꯥꯔꯥꯖꯒꯤ ꯊꯣꯉꯥꯛꯏꯕ ꯑꯩꯅꯤ ꯑꯩꯒꯗꯤ ꯀꯔꯝ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯝꯕꯥ ꯌꯥꯒꯗꯒꯦ? ꯂꯝꯕꯥ ꯁꯥꯗꯦ ꯑꯩꯒ ꯅꯪꯒ ꯂꯝꯕꯥ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅꯅꯦ ꯂꯝꯕꯥ ꯄꯥꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯕꯂꯤ ꯃꯍꯥꯔꯥꯖꯒ ꯂꯝꯕꯥ ꯄꯥꯕꯤꯔꯨ ꯀꯣꯅꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯁꯪꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯁꯤꯗꯣ ꯗꯁꯒꯤꯔꯤꯕ ꯂꯪꯀꯥꯏ ꯔꯥꯕꯣꯟ ꯃꯗꯨꯗ ꯍꯔꯥꯎꯈꯤꯕ ꯅꯥꯄꯟ ꯀꯥꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯖꯒꯠꯀꯤ ꯃꯕꯨꯡꯅ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯅꯤꯡꯗꯗꯅ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯛꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯄꯥꯄꯤꯅꯤꯅ ꯃꯨꯔꯈꯅꯤꯅ ꯔꯥꯕꯣꯟ ꯈꯪꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯂꯝꯕꯥ ꯁꯥꯕ ꯕꯂꯤꯒꯤ ꯁꯤꯡꯍꯗ꯭ꯋꯥꯔꯅꯤ ꯍꯟꯗꯕꯅꯤ ꯂꯝꯕꯥ ꯁꯥꯗꯦ ꯑꯀꯟꯕ ꯕꯂꯤꯒ ꯂꯝꯕꯥ ꯄꯥꯔꯨ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯕꯅꯦꯗꯅ ꯃꯗꯨꯗ ꯔꯥꯕꯣꯟ ꯃꯌꯥꯏ ꯀꯥꯗꯅ ꯚꯥꯂꯣ ꯚꯥꯂꯣ ꯐꯩ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀꯣꯅꯨꯡ ꯁꯪꯉꯒꯦ ꯕꯂꯤ ꯃꯍꯥꯔꯥꯖ ꯂꯝꯕꯥ ꯄꯥꯔꯨꯔꯒꯦꯗꯅ ꯂꯪꯀꯥꯏ ꯔꯥꯕꯣꯟꯁꯤ ꯕꯂꯤꯒꯤ ꯀꯣꯅꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡ ꯇꯝꯅ ꯒꯥꯝ ꯒꯥꯝ ꯒꯥꯝ ꯅꯥꯐꯟꯅ ꯃꯥꯡ ꯊꯥꯔꯦꯔꯒ ꯀꯥꯂꯤ ꯅꯦꯠ ꯅꯦꯠꯇꯅ ꯒꯤ ꯒꯤ ꯒꯤ ꯁꯪꯉꯤꯕꯅꯤꯀꯣ ꯂꯪꯀꯥꯏ ꯔꯥꯕꯣꯟ ꯃꯗꯨꯗ ꯕꯂꯤ ꯃꯍꯥꯔꯥꯖꯅ ꯎꯔꯦ ꯐꯖꯩꯀꯣ ꯕꯂꯤ ꯃꯍꯥꯔꯥꯖꯥ ꯑꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯒꯂꯣꯟ ꯕꯦꯕꯍꯥꯔ ꯚꯛꯇꯤ ꯃꯥꯕꯨ ꯂꯝꯕꯥ ꯄꯥꯒꯦ ꯂꯥꯟ ꯊꯦꯡꯅ ꯁꯦꯗꯅ ꯁꯪꯉꯤꯕ ꯅꯤꯄꯥꯅꯤ ꯂꯪꯀꯥꯏ ꯔꯥꯕꯣꯟ ꯈꯪꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯈꯪꯉꯦ ꯕꯂꯤ ꯃꯍꯥꯔꯥꯖꯥ ꯑꯗꯨ ꯃꯔꯩ ꯄꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯏꯀꯧꯅꯤꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯗꯤ ꯌꯨꯝꯕꯨꯅ ꯕꯦꯕꯍꯥꯔ ꯑꯃ ꯎꯠꯄ ꯍꯧꯅꯩ ꯊꯧꯒꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯑꯗꯨ ꯎꯠꯄ ꯍꯧꯅꯩꯗꯅ ꯕꯂꯤ ꯃꯍꯥꯔꯥꯖꯥꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯁꯦꯒꯤꯔꯤꯕ ꯂꯪꯀꯥꯏ ꯔꯥꯕꯣꯟ ꯏꯔꯩ ꯄꯥꯛꯇ ꯂꯦꯡꯕꯤꯔꯛꯄꯕꯨ ꯀꯔꯤ ꯇꯥꯛꯄꯤꯒꯗꯕ ꯐꯤꯗꯥ ꯁꯣꯝꯗ ꯆꯥꯅ ꯊꯛꯅꯅꯕ ꯃꯗꯨꯗ ꯍꯩꯔ ꯑꯍꯥꯎ ꯑꯍꯥꯎꯕ ꯃꯒꯨ ꯂꯩꯔ ꯂꯩꯔꯕ ꯀꯌꯥ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯇꯅ ꯑꯔꯥꯕꯣꯟꯒꯤ ꯃꯥꯡꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯕꯦꯕꯍꯥꯔ ꯎꯠꯂꯤ ꯊꯧꯒꯂꯣꯟ ꯎꯠꯂꯤ ꯗꯁꯒꯤꯔꯤꯕ ꯂꯪꯀꯥꯏ ꯔꯥꯕꯣꯟꯅ ꯃꯍꯥꯔꯥꯖꯥ ꯃꯍꯥꯔꯥꯖꯒꯤ ꯅꯔꯩ ꯄꯥꯛꯇ ꯕꯤꯁꯅꯨꯅ ꯅꯔꯩ ꯄꯥꯛꯁꯤ ꯉꯥꯛꯑꯦꯕ ꯑꯔꯥꯕꯣꯟ ꯑꯩ ꯇꯥꯔꯦ ꯕꯤꯁꯅꯨ ꯂꯝꯕꯥ ꯄꯥꯒꯦ ꯕꯤꯁꯅꯨ ꯖꯣꯏ ꯇꯧꯒꯦ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯍꯥꯔꯥꯖꯕꯨꯁꯨ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕ ꯄꯤꯒꯦ ꯑꯔꯥꯕꯣꯟ ꯏꯄꯨꯅꯤꯡꯗ ꯈꯜꯂꯒ ꯅꯔꯩ ꯄꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯃꯍꯥꯔꯥꯖꯕꯨ ꯃꯗꯨꯗꯅꯤ ꯕꯂꯤ ꯃꯍꯥꯔꯥꯖꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯁꯤꯒꯤꯔꯤꯕ ꯂꯪꯀꯥꯏ ꯔꯥꯕꯣꯟ ꯕꯤꯁꯅꯨꯕꯨ ꯂꯝꯕꯥ ꯄꯥꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯁꯤꯡꯍꯗ꯭ꯋꯥꯗ ꯁꯪꯉꯛꯄꯗ ꯊꯣꯉꯥꯍꯧꯔꯤꯕ 마야암 뿐에 먹는 턱은 너는 안비 허리봐. 이붕어 너 제갓김어 붕어 세리 나란 비스누 하버두니네. 이붕어 누가 남바파 아버디 까라이 되기에 마틱사디 제갓 뿐에 먹고 이붕어 마기 미행하면 샘비버니 미행하면 로이나 망한 비붕어 제갓김어 붕어니 마하라자구 마두도 이래라보는 바로 바로 다이는 다이나 발리 마하라자 다이는 에이 비스노 람바파게 비스노 조이 피게 하비기 담악타 랄라이바 아라보레온데 비스노 마샥타크데 나타나 비스노기 레이범 타이바 발리 마하라자 다이는 에이 비스노 람바파루기게 마마일레이데 나마팔롬데 랑카이라보 감감 감 헤트 토크리라보 시기마 카시디나 나이기담악테디 시리 아라다 고빈다 이봉이비 시다라마기 나마미르트부 무컴보리 손미르가 비샤라마크리 포타비가더보이 제이 시다람 아라다 고빈다
1: 라마연 기와리데 타비리 라마연 우탈칸드기 만웅다 라반닝 타우나 파탈 비제이 세트바 마탕 와리 리비키바 요렘밤 베르마니 싱 아카스와니 임팔 하우지 러브 비라시 웨스턴 뮤직이 타우람

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में किसी भी नियम के तहत चर्चा के लिए तैयार। सरकार ने कहा, युवाओं के भविष्य की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। युद्धपोत INS मालवन भारतीय नौसेना में शामिल। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले दो दिनों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। और चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अलवी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार मॉनसून सत्र के पहले दिन से ही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस चर्चा के लिए नियमों का निर्धारण किया जाना चाहिए। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा प्रश्न पत्र पर गहन चर्चा चाहती है। उन्होंने कहा कि बहस जितनी भी लंबी चले उतनी लंबी होनी चाहिए और यथाशीघ्र शुरू होनी चाहिए। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार ने विपक्षी दलों को इस मुद्दे पर खुली चर्चा के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने इस तरह की बाधाएं खड़ी की जिससे प्रतीत होता है कि वे संवाद में शामिल नहीं होना चाहते।
1: देखिए, जो ऑपोजिशन पार्टी बोलना चाहते वो तो बोलना ही है चर्चा के दौरान, हम मना नहीं कर सकते। लेकिन चर्चा को रोकने के लिए आप अगर कंडीशन डालेंगे तो इसका मतलब आप चर्चा नहीं चाहते हैं। हमने जब खुले दिल से ऑफर किए सरकार की ओर से कि हम चर्चा चाहते हैं, तो उसको व्यवधान डालने के लिए कोई कंडीशन ऐसा डालेंगे ताकि चर्चा ही ना हो, ये तो ठीक बात नहीं है।
0: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास के पास विरोध प्रदर्शन करना विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को दर्शाता है।
2: संवैधानिक पद पे रह के संविधान की गरिमा को तार तार किया, उनका ये आचरण बहुत ही खतरनाक मंशा से वो भारत में दूसरे देशों का नकल करके यहाँ उपद्रव कराना चाहते हैं।
0: भाजपा सांसद डॉक्टर सतीश पूनिया ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन करके कांग्रेस पार्टी पर अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। इस बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि विद्यार्थियों का संघर्ष वास्तविक है और वे बदलाव की मांग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज कहा कि केंद्र सरकार विद्यार्थियों के साथ है और देश के युवाओं के भविष्य की रक्षा करना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने युवा नेतृत्व वाले विकास के मंत्र को विकसित भारत को मजबूत करने की नींव बनाया है।
3: आप सब जानते हैं कि नीट जैसा एग्जाम जिसमें 20 से 22 लाख कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं उसकी तैयारी में 6 महीने लगते हैं, लेकिन मात्र 37 डेज में नीट का री एग्जामिनेशन किया गया और रिजल्ट भी मात्र 25 दिन में आप सभी के सामने ला खड़ा कर दिया गया। जो री एग्जामिनेशन हुई उसमें टेक्नोलॉजी को लेवरेज करा गया ताकि कहीं पर भी अगर किसी भी प्रकार का लूप होल हो उसको कर्ब किया जाए, उसको प्लग इन किया जाए।
0: सुश्री स्वराज ने बताया कि सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पेपर लीक के 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया और अब वे सभी जेल में हैं। उन्होंने कहा कि आरोपियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा कल प्रधानमंत्री आवास के गेट के बाहर बिना अनुमति धरने पर बैठने की कड़ी निंदा की है। नई दिल्ली में भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास की गरिमा को जानते हुए भी श्री गांधी ने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया। भाजपा सांसद ने सुरक्षा प्रोटोकॉल के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा सर्वोपरि है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले और विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए और राज्यसभा दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग करने का आग्रह किया। इससे पहले जब लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू करने के लिए एकत्रित हुई तो अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध का मुद्दा उठाया। श्री बिड़ला ने विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा। इस कारण लोकसभा को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का मामला उठाया। अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि सरकार इस मामले पर चर्चा के लिए तैयार है और चर्चा के समय को लेकर सभी को एकमत होना चाहिए। हंगामा जारी रहने पर श्री बिड़ला ने सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। राज्यसभा में भी यही स्थिति देखने को मिली। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद जब सदन दोबारा शुरू हुआ तो विपक्ष ने नीट मामले पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। उपसभापति हरिवंश ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रश्नकाल संसदीय कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये सदस्यों का अधिकार है।
4: आजादी के 50 साल बाद सदन ने यह संकल्प लिया था कि किसी भी हालत में क्वेश्चन आवर और जीरो आवर चलाएंगे। ये मेंबर्स के आवर है। आपके प्रश्नों को उत्तर तैयार करने में कितना श्रम जाता है और जनता का धन जाता है, आप इसकी कल्पना करिए। आपको प्रश्न पूछने का अवसर मिलता है, प्लीज अपनी सीट पर बैठिए और क्वेश्चन आवर चलने दीजिए।
0: बार बार अपील करने के बावजूद विपक्षी सदस्यों ने उपसभापति की सलाह पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण सदन को दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, ITO, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय नौसेना ने आज कर्नाटक के कारवार INS कदम्बा नौसेना बेस पर माही श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS मालवन को बेड़े में शामिल कर लिया। INS मालवन 8 पनडुब्बी रोधी युद्धपोतों में से दूसरा युद्धपोत है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है। इस समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर एयर चीफ मार्शल ने आत्मनिर्भरता की दिशा में नौसेना के प्रयासों की सराहना की।
5: आत्मनिर्भर भारत जो हमने एक सपना देखा है, हम उसके बहुत करीब आई जा रहे हैं। बहुत जल्दी इंडियन नेवी ने ये सपना अपना लिया था, हम लोगों ने देर करी है बल्कि, बिकॉज वेरियस सेक्टर्स टेक डिफरेंट टाइम्स टू ग्रो एंड आई थिंक इन एज फार एज नेवल शिप बिल्डिंग इज कंसर्न, इंडिया हैज ऑलवेज हैड एन एज एंड वी हैड कैरीड आवर लेगेसी फॉरवर्ड एंड इन मेकिंग शिप्स। सो वेरी गुड प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन आत्मनिर्भरता एज फार एज शिप बिल्डिंग इज कंसर्न।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि IASV त्रिवेणी पर सवार होकर पहली बार सभी सेनाओं की महिला सदस्यीय समुद्री अभियान समुद्र प्रदक्षिणा ने न केवल पृथ्वी का चक्कर लगाया बल्कि इस असाधारण उपलब्धि से करोड़ों भारतीयों को गौरवान्वित भी किया। उन्होंने IASV त्रिवेणी को आत्मनिर्भर भारत और भारत के नवाचार क्षमताओं और आत्मविश्वास का जीवंत उदाहरण बताया। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज फिलीपींस के मनीला में आयोजित

0: क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। एक संयुक्त वक्तव्य में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमरीका ने एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई, साथ ही आसियान की एकता और केंद्रीय भूमिका के लिए अपने अटूट समर्थन की पुष्टि की।
1: In this era of volatility and disruption,
2: उथल पुथल के इस दौर में आपूर्ति श्रृंखला पर सबसे अधिक दबाव दिख रहा है। ऊर्जा, भोजन और स्वास्थ्य सुरक्षा को अब हल्के में नहीं लिया जा सकता। इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना बहुत जरूरी है। वर्ष 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष के तौर पर मनाया जाएगा। साथ ही भारत और आसियान दोनों ही अपने भविष्य को लेकर उम्मीद से भरे हैं, इसलिए चुनौतियों का सामना करते हुए भी हमें मौकों पर पूरी तरह ध्यान देना चाहिए।
0: बैठक के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बैठक में भारतीय अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा है कि ईरान को हुर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण की अनुमति देना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और नौवहन की स्वतंत्रता के लिए एक बेहद खतरनाक कदम होगा। डॉक्टर जयशंकर ने आज फिलीपींस के मनीला में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठकों के दौरान फिलीपींस, रूस और सिंगापुर के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने गुजरात, महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में कल तक मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश होगी। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। 16 जिलों में पानी भरा हुआ है। राज्य में बाढ़ में 21 और लोगों की मौत हो गई है, जिससे मृतकों की कुल संख्या 31 हो गई है।
3: आधिकारिक रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य में 872 गांव अभी भी जलमग्न हैं और 5,64,000 से भी अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। 24,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि पानी में डूबी हुई है। कामरूप और कामरूप महानगर जिलों में भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, जहां 4,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। राज्य सरकार ने 71 राहत शिविर और 202 राहत वितरण केंद्र स्थापित किए हैं। इन शिविरों में 12,000 से अधिक लोगों को आश्रय दिया गया है, जबकि 1,00,000 से अधिक प्रभावित लोगों को राहत सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। NDRF, SDRF, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज तथा स्थानीय प्रशासन की टीमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और राहत कार्य में लगातार जुटी हुई है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: जम्मू कश्मीर में कटरा और त्रिकुटा पहाड़ियों में खराब मौसम के कारण आज लगातार चौथे दिन भी श्री माता वैष्णो देवी यात्रा स्थगित रही। चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के आयुष शेट्टी ने आज पुरुष सिंगल्स में इंडोनेशिया के अलवी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन भी आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 1% की गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 753 अंक गिरकर 76,717 पर और निफ्टी 202 अंक की गिरावट के साथ 23,986 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में किसी भी नियम के तहत चर्चा के लिए तैयार। सरकार ने कहा, युवाओं के भविष्य की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। युद्धपोत INS मालवन भारतीय नौसेना में शामिल। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्रों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले दो दिनों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार फौजी भाइयों, ये है आकाशवाणी फाल केंद्र का कंगला चैनल। मीडियम वेव 340.1 मीटर अर्थात 882 किलोहर्ट्ज़ पर आरंभ होता है फौजी भाइयों के लिए प्रसारित हमारा दैनिक कार्यक्रम।

फौज भाई आज बुधवार है और हम लेकर आए हैं फिल्म संगीत। तो कार्यक्रम के पहले पायदान पर सुनते हैं मजरू सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत के बोल को फिल्म कभी हाँ कभी ना में अलका याग्निक और कुमार सानू के युगल स्वर में। संगीत से सवारा है जतिन ललित ने।

फौजी भाई, अब सुनते हैं अगला गीत। AR रहमान के संगीत निर्देशन में बनी फिल्म है 1947 अर्थ। इस गीत में आवाज़ दी है सुखविंदर ने और इसकी शब्द रचना की है जावेद अख्तर ने।

फौज भाई, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी इम्फाल केंद्र के कांगला चैनल से फिल्म संगीत कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब सुनते हैं राम लक्ष्मण के संगीत निर्देशन में बनी फिल्म 100 डेज से ये गीत लता मंगेशकर और अमित कुमार के युगल स्वर में। इस गीत के बोल लिखे हैं रविंद्र रवाल ने।

अब सुनते हैं अलका याग्निक और सान के युगल स्वर में असुका फिल्म से ये गीत। बोल गुलजार के हैं और संगीत अनु मलिक का।

फौजी भाई फिल्म का नाम है चमेली और इस गीत में आवाज़ दी है सुनिधि चौहान ने। बोल इशात कामिल के हैं और संगीत संदेश संडियाल का।

फुजभा अभी आपने सुना चमेली फिल्म से सुनिधि चौहान की आवाज़ में ये गीत। अब सुनते हैं अगला गीत श्रेया घोषाल की आवाज़ में जब वी मेट फिल्म से। बोल इशाद कामिल के हैं, संगीत प्रीतम का।

फौजी भाई अब सुनते हैं अलका याग्निक की आवाज़ में असोका फिल्म से ये गीत। बोल गुलजार के हैं और संगीत अनु मलिक का।

फौजी भाई, इसी गीत के साथ आज का फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। कल फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

आकाशवाणी इम्फाल जु तेलिशो आंगुताकु रे पुम विशो जहानु आखाई सुले कबिशु दुनु कालिशो रे दुशो तेला हाना हिनु दखले मै वैशिनु वैनु बिखाइतियो

आकाशवाणी इम्फाल हौजिक सन्दोक्षरी मणिपुर फिल्म इसैसिंह कुदोलगे हाम्रा ताबिरसी उमोनिन सक्पा अवन्मे फिल्म्सदेखि इसै अमा सैरेङ्बा जिल्ला लैसाङथेम सैराङ्बना अनन्त

0: 入場しり、可以기먹고니마나호래는한젤라빠다디소이드나에쿠이보하드나자라라니세그리루신도시바아숨나칼락라미마마이탕나마하나칸마마카이칼루르가로싱아마락드나람휘아몸아두다아이라미누피따리브라아이코이나레이리버시ကိနုံဆာယမ်နကန်မမဖမ်နီအိမပန်ဒအဆုံလေးကေမခွိလာပရယင်ကေနန်ဒီနချာအနောဘချေလီဘနီနာယုံမနုံဒအဒုံမရယုကရီဂုံဘလာကလဘဒီအိဥထပ်တဂီဥကူဥရန်သာဒရကေမဒုဒနန်နနန်ဂီနချာစင်ငဒိုယမ်နကဖလအုအဒုဂအိနဥထပ်တဂီhai nu pe anang singa du bu kare taw ra bage adop nyam na kaphal le du bu hai na hang lak madu da nan na khang je dre ni nga ye se pu ba thang ba ngam je dre hou jik pu kai ja ge hai na ni nga ai taw ri
1: asum na het khum la u adu da ai na
0: narang pha ba du di kai daw ra bage hai rak ke
1: adu da sunan na
0: ho tagat tagat tik pa cha ge cha jik te cha nim de hai du na ni nga ai taw ri ba ni
1: असों न खुमलो हाय न पाउमेन बगा मथकता लमहे हनुबा दुका खत खिरामी नुमित्ता सिलकलामी कई यदुसु मचिन जाक थी रुबदगी मपुक थल्लदुना मकोंदा पोथार रगे खंदुना अचौब सजे यम चिंग लगा लाक प अदो लमहे न उथकतगी लाप न उरमी
0: हाय नुपी तारी ब्रा कई जाओ अमा लाख ले है चेक्सलो आई न हाय की बस सिंग दो कागुनु
1: असम न हाय रख लमी लम्हे अमोम अदुसो थोक तो न येंग बदा कई जाओ अदु लाख बदु उरे खरा नक्सल लग बदा लम्हे अमोम अदुना मचा सिंग अदु खरा नेत खुजन न खरा खोत तो दुना पंकप तक कफा लग लमी मचा सिंग अदुना कबलक लब अदुदा लम्हे हनुबा अदुना उठक तगी याम न हाऊ न लाऊरक लमी
0: हाय नुपे करी तोर बगे अंगांग सिंग अदुना गसी असुप याम न कबली बदुबो
1: वा अदुता बदा अमो मदुना
0: हो खंजे द्रे न जाने गाई जाओ सिंग न से खांग बंगम जे द्रे संगी संदुम पी फते सजे संदुम पी फते हाउजिक पो कई चागे ये
1: असम न हाय रख लबदा लम्हे हनुबा दुना अमुक हन न हाय रख लमी
0: ऐ नगरांग फारक प कई यदु पिजाउ दुना
1: असम न हाय रबदा
0: हो नगरांग की चजिक ती चानिंग दे नरसी की तगत तगत तेक पदो चागे हाय री बनी खांग बंगम जपो न त्रेदा
1: असम न हाय रबदा
0: नाय खो अदु दी आद कई अमला को उरे मसे फारुखिगे
1: वफम अदु ताबदा कई यदु ही है कि इकोंदा कनागुंबा अचौबा अखेबु चाबंगंबा फाबंगंबा हाथबंगंबा साले रमाले

बिल्कुल हम आ चुके हैं आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम लेकर। जी हाँ, हर्ष श्रृंगार और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं रितिका आप सभी का स्वागत करती हूँ। '92 में आई फिल्म दीवाना से आपने ये गीत सुना, ऋषि कपूर और दिव्या भारती पर फिल्माया ये गीत। समीर का लिखा ये गीत नदीम श्रवण के संगीत से सजा अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में। कहते हैं कि तेरी बातों में जादू सा लगता है, तेरी बातों में जादू सा लगता है, तेरे साथ मौसम का रंग बदलता है। चलो मोहब्बत के साए में खो जाए, क्यों ना इस प्यार भरी मस्ती में साथ में भीग जाए।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

बिल्कुल आप रोइए मत, हंसते रहिए, क्योंकि आप हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ और सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम हर श्रृंगार। शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित पर फिल्माया ये गीत आपने सुना अभिजीत की आवाज में, आनंद मिलिंद का संगीत और समीर का लिखा ये गीत। कहते हैं कि जब प्यार किसी से होता है तो हर दर्द भी मीठा लगता है, हर लम्हा उसकी यादों में कटता है और हर सपना बस उसी का लगता है।

तो दोस्तों, हर श्रृंगार में आज बस इतना ही। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार। बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इस परिकल्पना की नींव बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबद्ध क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बैनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बैनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और संसदीय टिप्पणी की।
1: आज श्री कल्याण बनर्जी ने हमारी महिला सांसदों के साथ असंसदीय भाषा एवं असंसदीय टिप्पणियां की है, जिसकी लिखित शिकायत माननीय अध्यक्ष जी को प्राप्त हुआ है। ये सदन की गरिमा के विरुद्ध है।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
2: सरकार नीट पेपर लीक चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
0: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्ष के आचरण की कड़ी निंदा करते हुए इसे गैर जिम्मेदाराना और लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध बताया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेल सुरक्षा में सुधार, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। लोकसभा में आज एक लिखित प्रश्न के उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2014-15 में हुई 135 रेल घटनाओं की संख्या घटकर इस वित्त वर्ष में अब केवल 2 रह गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा ने कहा है कि नीट पेपर लीक के मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। श्री नड्डा ने कहा कि ये गंभीर मामला है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा कि सरकार संसद में नीट के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष चर्चा की अवधि तय करे और सभी पहलुओं पर खुलकर बात करें ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। उन्होंने विपक्ष से इस मुद्दे के समाधान के लिए सरकार का साथ देने की अपील भी की। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी स्टेशन अब यात्रियों के लिए खुल गए हैं। इससे पहले दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सुरक्षा कारणों से 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए थे। चीन के चांगझोउ में चल रहे चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स के पहले दौर में पीवी सिंधु ने हमवतन उन्नति हुड्डा को हराया। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अल्वी फरहान को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। वहीं लक्ष्य सेन ने जापान के युशी तनाका को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द The news read by Reshma Tiwari. Prime Minister Narendra Modi has emphasized that the dream to build a Viksit Bharat should become a Jan Andolan and the country's youth should form the foundation of this vision. He said the welfare of citizens must remain at the heart of all reforms. The Prime Minister made the remarks while chairing a high-level meeting with secretaries to review the progress of rural development, agriculture, social welfare and allied sectors towards Viksit Bharat goals in New Delhi. The meeting was attended by the Cabinet Secretary, secretaries of key ministries as well as senior officials from the Prime Minister's office. The Prime Minister underscored the importance of tackling the serious issue of drug abuse among youth. He also stressed the importance of promoting technology and fostering innovation through startups in the sports sector. The government today reiterated its readiness for meaningful discussion on NEET paper leak issue in the parliament. Speaking in the Lok Sabha, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said the government was prepared for a meaningful debate on the issue involving all sides under established parliamentary rules, keeping in mind the future of the country's youth. Mr. Rijiju's remarks came as both houses of parliament witnessed repeated disruptions by the opposition for the third consecutive day today over various issues, including the NEET paper leak case and student protests. Later, the Lok Sabha and Rajya Sabha were adjourned for the day. The opposition demanded resignation of the Union Education Minister before discussion. Speaking in the Rajya Sabha, the Parliamentary Affairs Minister accused the Congress of avoiding a debate by imposing fresh conditions despite the government's willingness to discuss the issue. Defence Minister Rajnath Singh has expressed concern over the ongoing protests in Delhi, saying the centre is deeply sensitive to the sentiments and concerns of the youth and is ready to listen and address every concern raised by students. Mr. Singh was talking to media in New Delhi. The minister alleged that some individuals are attempting to use the students and youth as political tool to serve their own political interests.
4: It is deeply unfortunate that some people are trying to use the students and youth of our country as political tools to serve their own political interest. Under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, our government is fully committed to fulfilling the aspirations of students and young people and ensuring their welfare. Listening to every concern of students and addressing them is the responsibility of all of us.
3: The Delhi High Court today sought responses from the Centre and Delhi Police on pleas alleging use of excessive force against protesters marching to Parliament on Monday. The court directed the authorities to preserve all relevant records in relation to the police action, including CCTV camera footage and videography. The court gave 4 weeks to the authorities to file their replies. Union Coal and Mines Minister G. Kishan Reddy today said the government has earmarked nearly 40,000 crore rupees for the scientific closure of abandoned coal mines with a target of closing over 147 identified coal mines by 2027-28. Addressing the release of India's first annual report on scientific mine closure titled Aroh in New Delhi, Mr. Reddy said the government no longer views mine closure as the end of mining activity, but sees it as the beginning of new opportunities for communities and the environment. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today met his Canadian counterpart Anita Anand this afternoon on the sidelines of Quad Foreign Ministers meeting in Manila, Philippines. In a social media post, Dr. Jaishankar said India-Canada cooperation has been steadily growing. He said the conversation focused on achieving the goals for the relationship set by the Prime Ministers of both the nations. Dr. Jaishankar also met with his New Zealand counterpart Winston Peters and shared perspectives on the Indo-Pacific security situation. In China Open Badminton, PV Sindhu, Ayush Shetty and Lakshya Sen have entered singles pre-quarterfinals in Changzhou. Double Olympic medalist PV Sindhu advanced to the women's singles second round after defeating fellow Indian player Unnati Hooda by 21-14, 9-21, 21-10 in a round of 32 clash this afternoon. And that is the end of this news bulletin.
5: अब सुनिए आज शाम 6:30 बजे प्रसारित मार्केट मंत्र कार्यक्रम का पुनः प्रसारण।

0: This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra. I am Gaurav Dhawan Lal with my co-anchor Amit Goyal.
1: नमस्कार. मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है. देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों और शेयर बाजार की हलचल पर चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक विश्लेषक सुषमा रामचंद्रन. सुषमा, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
2: धन्यवाद अमित.
1: सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर, तो अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ गौरा.
0: थैंक यू अमित एंड सुषमा, वंस अगेन वेलकम टू द प्रोग्राम. अ क्विक लुक एट द हेडलाइंस. बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस कंटिन्यू डाउनवर्ड ट्रेंड. Sensex declines over 700 points. Nifty settles below 24,000 level. Most Asian stock market indices end with gains. And global crude oil prices rise around 4%.
1: आर्थिक सुर्खियों में, घरेलू शेयर सूचकांकों में गिरावट का दौर जारी. Sensex 700 अंक से अधिक लुढ़का. Nifty भी 24,000 के स्तर से नीचे दर्ज. प्रमुख एशियाई बाजारों में मजबूती का दौर और वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 4% की तेजी.

0: Listeners, before we move well into the program, we'd like to share that the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले नजर डालते हैं शेयर बाजार पर। बढ़ते वैश्विक तनाव और तेल की कीमतों में जारी तेजी से घरेलू सूचकांकों में आज लगभग 1% तक की गिरावट दर्ज हुई। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.9% के नुकसान से 715 अंक लुढ़ककर 76,755 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.8% की गिरावट से 191 अंक गिरकर 23,996 के स्तर पर बंद हुआ। एनएसई मिड कैप सूचकांक में 1% से अधिक और स्मॉल कैप सूचकांक में 1.5% से अधिक गिरावट दर्ज हुई।
0: Benchmark domestic equity indices declined nearly 1% today amid ongoing geopolitical tensions and elevated crude oil prices. The Sensex shed 715 points to close at 76,755. The Nifty lost 191 points to settle at 23,996. In the broader market on the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 Index fell over 1% and the Small-Cap 100 Index dipped over 1.5%.
1: Sensex Pack की 30 में से 24 कंपनियों में आज गिरावट रही। गिरावट वाले प्रमुख शेयरों में इंडिगो 3.6%, इन्फोसिस 2%, स्टेट बैंक और अल्ट्राटेक सीमेंट 1.8% के नुकसान से बंद हुए। हालांकि हिंदुस्तान यूनिलीवर 0.7%, एनटीपीसी तथा पावर ग्रिड 0.6% और टाइटन 0.4% की बढ़त बनाने में कामयाब रहे।
0: ब्रॉड बेस्ड सेलिंग वाज ऑब्जर्वड इन सेक्टोरल इंडिसेस ऑन द बीएसए। एफएमसीजी इमर्ज्ड एज द सोल गेनर राइजिंग 0.4% व्हाइल ऑल अदर सेक्टर्स एंडेड इन द नेगेटिव जोन। Among the top laggards, realty dropped 2.6%, services slipped 2%, and PSU banks lost over 1.8%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,780 companies declined, 1,458 advanced, and 180 remained unchanged.
1: अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 33 पैसे की गिरावट से 96.57 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ।

0: चल रहा है ये बेरिस्टेंट, ये तो साफ आपने भी अपनी खबरों में बोला है कि ये जो तेल की कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं, लेकिन तेल की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? ये इसलिए बढ़ रही हैं कि ईरान और यूएस के बीच में जो समझौता था, जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था, वो टूट गया है और बीच में गोलाबारी शुरू हो गई है, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया है। हालांकि खबरें ये भी आ रही हैं कि बीच में मीडिएटर्स आ गए हैं और कोशिश दोनों तरफ से है कि किसी ना किसी तरह ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसके ऊपर कोई अंत लगाया जाए। तो ये जब तक ये ये जो प्रॉब्लम चल रही है वेस्ट एशिया में, तब तक तेल की जो कीमतें हैं वो बढ़ती रहेंगे। और इसमें ये भी डर है, अगर आप तेल की कीमतों की बात करें तो जो पहले के जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स थे, जब ये कॉन्फ्लिक्ट, जब ये वॉर शुरू हुआ, ये जंग शुरू हुआ मार्च में, फरवरी के एंड में, तो उस वक्त स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स थे, अमेरिका के भी थे और बहुत सारे देशों के थे, तो वो रिलीज हो गए थे। लेकिन अब इस वक्त वो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स नहीं है। तो अवेलेबिलिटी, खैर ये बात नहीं है कि अवेलेबिलिटी नहीं है, लेकिन इतनी जो इन्वेंट्रीज थी वो कम हो गई हैं, और बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ऑयल ड्रिलिंग वगैरह का जो वेस्ट एशिया में, उसके ऊपर वो भी काफ़ी डैमेज हो गया है, तो इसका भी डर है। तो ये तो एक बहुत बड़ी वजह है जिससे हमारी जो मार्केट्स हैं वो हिल गई हैं। दूसरी वजह ये है कि आज की जो खबर आई है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट ने कहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि फार्मा सेक्टर में वो टैरिफ्स लगाएंगे। खैर अभी नहीं, उन्होंने 2 साल की ये पीरियड दिया है कि 2 साल तक कुछ नहीं होगा, उसके बाद ये 100% और 200% के टैरिफ्स होंगे। तो उससे भी नेचुरली मार्केट्स को थोड़ा सा अगेन फिर से हिल गया है, क्योंकि फार्मा सेक्टर हमारा बहुत बड़ा है और एक्सपोर्ट्स में भी उसका बहुत बड़ा रोल है।
1: फार्मा सेक्टर की बात करिए, उससे संबंधित कुछ खबरें हमारे पास हैं, तो पहले उस बारे में भी थोड़ी सी जानकारी अपने श्रोताओं को दे देते हैं। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगस्त 2028 से जेनेरिक दवाओं के आयात पर भारी शुल्क लगाने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य अमेरिका में इन दवाओं का उत्पादन बढ़ाना है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि 1 अगस्त से अमेरिका में आयात होने वाली सभी जेनेरिक दवाओं पर 2 साल तक कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसके बाद शुल्क पहले वर्ष के लिए 100% और अगले वर्ष के लिए 200% तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो कंपनियां जेनेरिक दवाएं बनाने के लिए तय समय सीमा में संयंत्र और अन्य जरूरी व्यवस्था नहीं करेंगी, उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। सुषमा, जिस तरह से आपने अभी जिक्र किया कि अमरीका एक तरफ हम उसका और ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो युद्ध है, उसका दंश झेल रहे हैं, और अगर इस तरह की भी बातें आती हैं, क्या शेयर बाजार पर सीधा सीधा इसका भी असर पड़ता है?
0: ये तो बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि हमारा फार्मास्यूटिकल सेक्टर क्षेत्र जो है, एक तो बहुत बड़ा है हमारी उद्योग क्षेत्र में, और दूसरा हमारी जो निर्यात क्षेत्र में, ये वहाँ भी इसका बहुत बड़ा हिस्सा है फार्मास्यूटिकल्स का। और जो मार्केट्स में, एक्सपोर्ट मार्केट्स जो हमारे फार्मास्यूटिकल क्षेत्र देख रहा है, उसमें अमेरिका सबसे बड़ी मार्केट है, और खासकर जेनेरिक दवाइयों के लिए। ये जो बात कही है अमेरिका के राष्ट्रपति ने कि 2 साल के बाद ये होगा, इसको खैर हम थ्रेट कह सकते हैं, क्योंकि अगर 2 साल के बाद भी वो 100% टैरिफ लगाते हैं, तो इसका असर हाँ हमारी उद्योग के ऊपर तो होगा, लेकिन अमेरिका के जो कंज्यूमर्स हैं उनके ऊपर भी असर होगा, क्योंकि जेनेरिक दवाइयों का सबसे बड़ा सप्लायर हमारा देश है, और जेनेरिक दवाइयाँ, ये जो हमारी भारतीय दवाइयाँ जो हैं, वो अमेरिका में बहुत कंज्यूम की जाती है, मतलब बहुत खरीदी जाती है, और अगर इनकी आप टैरिफ लगाएंगे तो उनके जो दाम है वो बढ़ जाएंगे। वैसे भी जो दवाइयां अमेरिका में, उनकी जो उनका जो खर्चा है, उनकी जो कॉस्ट है, वो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू इंडियन मेडिसिन्स। कई लोग जो अमेरिकी हैं, अमेरिकन सिटीजन, यहाँ आके दवाइयाँ खरीदते हैं और वहाँ वापस चले जाते हैं। तो ये हम थ्रेट समझ सकते हैं, और लेकिन फार्मास्यूटिकल क्षेत्र को इसके बारे में, फार्मास्यूटिकल जो उद्योग हैं इसके बारे में उनको सोचना पड़ेगा।
2: राइट, So a small question again, starting with pharma and the announcement over now. It's 2 years in the future.
0: Yes.
2: As an offing. We also know that the

0: past history of comments that are made of taxation, of taxes, living taxes, of ceasefire, of MOUs from the American president. We also know that there is, other than the share market volatility, there's a lot of volatility there also.
1: Yes, correct.
0: And linking this to the fall in the Indian stock market today in the indices that we saw. If we are looking at a direct correlation, possibly in the future, but also more to understand that even if that is, say, a threat in the future and not the reaction was not to that, the correction that we are seeing, actually is really not a correction. For a correction, to really have to rise and then come down. So this fall, actually a market fall.
1: Yes, yes.
0: And we are seeing it. So can we link it somewhere? Because earlier we've always had reason that either it's a correction or it's the monsoon or there is... And the Ukraine war has somewhere been built in because global supply was not affected that much.
1: Yes.
0: Stances were affected. Here, actually, you know, the shoe is pinching a lot, many countries.
1: Yes.
0: How do you see our stock market? And I know it's not about prophecy.
1: Yes.
0: But, you know, seeing the global situation, do you think that we'll somehow be able to build in that volatility and not... have such huge ups and downs because retail investors actually don't know what to do, the smaller ones. And they're sitting on a fair number of shares, which you keep thinking it might just go up. But over a six-month period, you're seeing that, my God, maybe I'll never recover.
1: Yeah. Well, I think, first of all, of course, investors have to, even retail investors, should take a long-term view. And I think this is normally the advice given by most financial analysts. Unless, of course, you're doing day trading and you're selling and, you know, buying on a daily basis. But retail investors should be taking a long-term view. The long-term view, of course, for India, the growth story remains intact. Now, of course, coming to this issue of the pharma sector and whether it has a direct impact, it is very true, as you point out, that this is a threat which is in the future, 2 years in the future, and from a person, the President of the United States, who has very often made statements, retracted, or even gone worse. And, you know, we have seen it within the Iran war also, and also in relation to the US-India trade deal. But the fact is, the markets, stock markets tend to be, and this is not just in India, but around the world, they tend to be sentiment driven, as they say. And therefore, the fact that he has made this announcement today, that may not have an impact on the pharmaceutical industry today, it may never have an impact on the pharmaceutical industry. But it is a sentiment response that it could have an impact if, for instance, 100% tariffs is levied on the pharmaceutical sector. And we are the largest provider of generics to the US. The US is the biggest market for generics. It will have an impact on the industry. So that is the sentiment which drives stock markets, and therefore you are bound to see volatility in the context of geopolitical tensions. Yes, I don't think that there is any getting away from this kind of volatility, because you are going to have the market reacting to these kind of developments. Now, just a few days ago, it looked like the war was settling down. The Strait of Hormuz had opened up. Availability of oil had increased. Prices had come down to below $70. Now we are up once again to over $90. So there is volatility in the geopolitical scenario, and therefore the stock markets are reacting accordingly. But at the same time, retail investors must remember that the underlying growth story of India, we have been able to, is intact, in the sense that we have been able to meet various crises with a great, I should say, you know, if you take in a macro sense, composure, in the sense that a country that has, we have continued growing at a fairly, fairly, we have continued growing at 7%, 7.5%. And despite all the tensions of the Ukraine war, where we had thought that we are going to have so many of us, there were supply chain disruptions, and we had thought that we would have a great deal of problems. So there are still problems. This is not the, not to wish them away, but I think we can tackle them.
2: Shushma, मैं वहीं से बात शुरू करता हूँ जहाँ बीच में आपने कहा, जैसा कि गौरव ने भी कहा, क्या ये टेक्निकल करेक्शन है या ये सेंटीमेंट का करेक्शन है या सेंटीमेंट कहीं गायब है या वाकई में हमारा या सबको ऐसा सोचना है कि भाई एनर्जी सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी चिंता का सबब है. भारतीय कंपनियों में चाहे जितना भी दम हो, बट फिलहाल के लिए एनर्जी सिक्योरिटी कहीं ना कहीं चिंता जो है वो इन सब पे ज्यादा भारी पड़ रही है. क्या यही एक वजह है जो शेयर बाजार को अभी ट्रिगर नहीं लेने दे रही या कहीं आगे नहीं बढ़ने दे रही, या वाकई कंपनी जगत से भी जो पिछले कुछ नतीजे आए हैं वो इतने उत्साहजनक नहीं रहे, या सबका मिला जुला रुझान है? महंगाई भी एक मुद्दा बन सकता है क्या इसमें?
1: देखिए, अब ये मैं नहीं मान सकती कि ये टेक्निकल करेक्शन है, इसको तो आप रहने दीजिए, क्योंकि ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस है, मार्केट का उतार चढ़ाव जो है वो उनके साथ ही चल रहा है, जैसे कोई राग चल रहा है और आप वो गायक का तबला साथ में, तो ये स्टॉक मार्केट की वैसे ही चल रही है. तो इसमें ये है कि जो एनर्जी सिक्योरिटी की जो आपने बात की वो बिल्कुल आपने, आई थिंक यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड. एनर्जी सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है हर उद्योग के लिए, हर कंपनी के लिए. और इसको एनर्जी सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि तेल को हम लोग समझते हैं जो क्रूड ऑयल है, और उसके अलावा पेट्रोल है और डीजल है, इसके अलावा बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, इसमें पेट्रोकेमिकल्स आ जाती हैं, इसमें प्लास्टिक्स आ जाती हैं. जो जब ये जो यूएस ईरान की वॉर शुरू हुई, एक महीने के बाद हमारे देश में प्लास्टिक्स के दाम बढ़ गए थे,
2: बहुत तेजी से
1: प्लास्टिक्स के दाम बढ़ गए थे. और मुझे किसी ने कहा कि किसी कंपनी का नाम लिया और उन्होंने कहा अरे वो लोग ये तो प्लास्टिक के दाम बढ़ा रहे हैं. मैंने कहा भाई अब ये प्लास्टिक के दाम क्योंकि पेट्रोकेमिकल्स के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोकेमिकल्स के दाम इसलिए
2: नहीं आ पा रहा है
1: क्योंकि तेल की वजह से, उसके साथ फर्टिलाइजर्स भी है. तो ये एनर्जी सिक्योरिटी जो है एक चीज नहीं है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है. और आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये है जो एक चीज जो हावी है सारे हमारे उद्योग क्षेत्र में.
2: FMCG लेकिन आज पूरे क्षेत्र में कहीं ना कहीं अपनी उम्मीदें जगाता हुआ नजर आया. FMCG
1: बिल्कुल,
2: क्या सिर्फ यही है वजह कि ये तो एक मूल जरूरत ही है इस वजह से, या कोई और बात?
1: नहीं, मूल जरूरत है, बिल्कुल है, क्योंकि हमारा कंजम्पशन, हमारा डिमांड, ये बहुत बड़ा देश है और हमारी जो इनकी जो रिक्वायरमेंट्स है, ये एक कहा जाता है कि हम लोग एक्सपोर्ट्स की तरफ क्यों नहीं देखते, क्योंकि हमारी मार्केट, इंटरनल मार्केट इतनी बड़ी है. तो ये FMCG के लिए यही है कि इतनी बड़ी मार्केट है. हाँ, क्योंकि वो क्या करते हैं, जब दाम बढ़ाने होते हैं तो वो पैकेज छोटे कर लेते हैं, तो स्मॉल पैकेट की इशू हो जाती है और फिर बड़े पैकेट्स कर लेते हैं. तो डेफिनेटली हमारे यहाँ कंजम्पशन बहुत बड़ा है, वाइड स्प्रेड एरिया है.
0: Right, and it's interesting that when we see FMCG and even luxury goods,
1: yes,
0: both segments, our consumption has not really, you know, fallen that much, and,
1: yes,
0: and it's I think it's a sign of maybe overall raising of standard of living.
1: Yes, it. Right. I mean that needs to be analyzed, but it could be.
0: Right. Moving on to our next story, Eternal Limited today reported its financial results for the first quarter of the current financial year. The company's consolidated revenue from operations rose by 182% year-on-year to 20,211 crore rupees. On a quarter-on-quarter basis, revenue increased around 17%. The company's consolidated net profit grew by 268% to 92 crore rupees compared with the corresponding quarter of the previous financial year. However, on a sequential basis, net profit declined over 47%.
2: नफर लाल ने एशियाई शेयर बाजार पर, एशियाई बाजारों में आज आमतौर पर मजबूती का रुझान रहा. ताइवान का ताइएक्स 1.3%, सिंगापुर का स्ट्रेच टाइम सूचकांक 1.2%, दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.7% और चीन का शंघाई कंपोफिट सूचकांक मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ. हालांकि हांगकांग का हैंगसेंग 0.9% और जापान का निकेई 0.2% के नुकसान से बंद हुआ.
0: सुषमा, व्हेन वी सी मार्केट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, वी सी द यूएस मार्केट, वी सी द इंडियन मार्केट्स, एंड वी आर समवेयर सेइंग दैट देयर आर geopolitical reasons which unifies sentiment possibly, but markets are all responding very differently. Your comment?
1: Yes, correct.
2: I mean, एक चीज मैं इसमें और भी जोड़ना चाहूंगा, सिर्फ अमेरिका ही नहीं जो युद्ध छेड़कर अपने बाजारों को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन एशियाई बाजार में भी जो ज्यादातर एशियाई बाजार हैं वो भी बढ़त में हैं, सिर्फ नुकसान हमारे शेयर बाजार उठा रहे हैं, ये क्या रिश्ता है, ये समझ नहीं आ रहा.
1: दिस इज I'll first talk about the, as you say, the differences between markets. First of all, the upsurge in Asia just now is largely due to the fact that exports of in both Japan and Hong Kong and Taiwan and South Korea have picked up. Japan has gone up by, you know, in double-digit figures exports. In Taiwan and South Korea, it has gone up specifically.

एक बार फिर से मैं रितिका आप सभी का स्वागत करती हूं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर, जिसको आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम है गीत मेरे मन में, और सबसे पहला गीत जो आपने सुना वो है अनजाना फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और आनंद बख्शी का लिखा ये गीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन

तो दोस्तों, गीत मेरे मनमीत में आज बस इतना ही। अपनी दोस्त रितिका को दीजिए इजाजत और अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार। बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और अन्य क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हो रही प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन बनना चाहिए और युवा इसकी सबसे बड़ी ताकत होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी सुधारों का मुख्य उद्देश्य लोगों का कल्याण होना चाहिए, साथ ही बदलते समय के साथ शासन व्यवस्था में भी बदलाव पर जोर दिया। इसके अलावा खेलों को बढ़ावा देने, किसान हित और कौशल विकास पर ध्यान देने की भी बात कही। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बैनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बैनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की।
1: आज श्री कल्याण बनर्जी ने हमारी महिला सांसदों के साथ असंसदीय भाषा एवं असंसदीय टिप्पणियां की है, जिसकी लिखित शिकायत माननीय अध्यक्ष जी को प्राप्त हुआ है। ये सदन की गरिमा के विरुद्ध है।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
2: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
0: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेल सुरक्षा में सुधार, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2014-15 में हुई 135 रेल दुर्घटनाओं की संख्या घटकर इस वित्त वर्ष में अब केवल 2 रह गई है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा संबंधी गतिविधियों पर व्यय 2013-14 में लगभग 39,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 2026-27 में 1,20,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा ने कहा है कि नीट पेपर लीक के मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। श्री नड्डा ने कहा कि यह गंभीर मामला है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा कि सरकार संसद में नीट के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने मनीला, फिलीपींस में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और कनाडा के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। केंद्र सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अनुराग जैन को नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। अनुराग जैन वर्ष 1989 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा और राजस्थान में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Reshma Tiwari. Prime Minister Narendra Modi has emphasized that the dream to build a Viksit Bharat should become a Jan Andolan and the country's youth should form the foundation of this vision. He said the welfare of citizens must remain at the heart of all reforms. The Prime Minister made the remarks while chairing a high-level meeting with secretaries to review the progress of rural development, agriculture, social welfare and allied sectors towards Viksit Bharat goals in New Delhi. The meeting was attended by the Cabinet Secretary, secretaries of key ministries as well as senior officials from the Prime Minister's office. The Prime Minister underscored the importance of tackling the serious issue of drug abuse among youth. The government has reiterated its readiness for meaningful discussion on NEET paper leak issue in the Parliament. Speaking in the Lok Sabha, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said the government was prepared for a meaningful debate on the issue involving all sides under established parliamentary rules, keeping in mind the future of the country's youth. Mr. Rijiju's remarks came as both houses of parliament witnessed repeated disruptions by the opposition for the third consecutive day yesterday over various issues, including the NEET paper leak case and students' protests. Later, the Lok Sabha and Rajya Sabha were adjourned for the day. Senior BJP leader and Union Minister JP Nadda has said that the NEET paper leak issue raised by the students should not be politicized and it is not appropriate to take political advantage from this matter. Addressing media in New Delhi last evening, Mr. Nadda said it is a matter of investigation and requires in-depth discussion. He said this is a serious problem which deserves a thorough and sincere discussion. Railways Minister Ashwini Vaishnaw has said train accidents have declined sharply in the country due to improved rail safety, infrastructure maintenance and use of modern technologies. In a written reply in the Lok Sabha yesterday, Mr. Vaishnaw said the number of consequential train accidents has reduced from 135 in 2014-15 to just 2 accidents in this financial year so far. He said the expenditure on safety-related activities has increased from around 39,000 crore rupees in 2013-14 to over 1,20,000 crore rupees in 2026-27. Chief Minister of Andhra Pradesh Chandrababu Naidu met with Prime Minister Narendra Modi yesterday at Parliament House. In a social media post, Mr. Naidu said that he invited the Prime Minister to the inauguration of the Sri Alluri Sitaramaraju International Airport scheduled for the 1st of next month. Union Minister of State for Women and Child Development Savitri Thakur has said that Beti Bachao Beti Padhao scheme helps to address child sex ratio and related issues of empowerment of girls and women. In a written reply to a question in the Rajya Sabha, she said, as per latest reports of the Health Ministry, the sex ratio at birth is showing improving trends and has increased at national level from 918 during 2014-15 to 929 during 2024-25. The centre has appointed senior IAS officer Anurag Jain as the Chief Executive Officer or CEO of Niti Aayog. The appointment has been approved by the Appointments Committee of the Cabinet ACC. According to an official order issued by the Department of Personnel and Training, DOPT, Mr. Jain will serve a 2-year term. High Commissioner of India to Kenya, Dr. Adarsh Swaika, has handed over the first tranche of 4.5 tons of medical supplies for strengthening Kenya's preparedness for prevention of Ebola public health emergency to Cabinet Secretary for Health, Aidan Dwale, in Nairobi. The medical assistance comprises PPE kits, sample transportation kits, infrared thermometers, face shields, heavy-duty protective boots, and other infection prevention materials. The film selected for the Waves Film Bazaar Screenwriters Lab 2025, titled Yayavar, The Migrating Bird, has signed a letter of intent for an international collaboration. The project has entered into a partnership with iRoller Media and Entertainment of India and Norsky Productions of Finland to jointly develop, finance, produce and position the film for international audiences. And that is the end of this news bulletin.

दोस्तों आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हुआ है 11:12:14। मैं हूं आपके साथ अंजू, कार्यक्रम लेकर आई हूं निशिगंधा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

चांद से क्या पूछूं तेरी सादगी की तारीफ, चांद से क्या पूछूं तेरी सादगी की तारीफ, वो तो खुद दाग छुपाए बैठा है तेरी रोशनी के आगे।

ये रातें कितनी हसीन हैं, ये रातें कितनी हसीन हैं जानते हो क्यों? क्योंकि ये मुझे तुमसे मिलने वाले हसीन ख्वाबों का तोहफा जो देती हैं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की

दोस्तों समय हुआ है 12:23 और ये हुआ 34 मिनट और 1 सेकंड। मैं हूं जो आपके साथ, कार्यक्रम चल रहा है, निशिकंधा।

इस दिल में दर्द भी तो तुमने ही जगाया है, इस दिल में दर्द भी तो तुमने ही जगाया है। अजीब दस्तूर है इश्क का, तुमसे गिला भी है और तुम ही पर ये प्यार भी आया है।

0: दोस्तों, अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। एक बजकर 10 मिनट पर फिर से आपसे मुलाकात होगी। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और अन्य क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हो रही प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन बनना चाहिए और युवा इसकी सबसे बड़ी ताकत होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी सुधारों का मुख्य उद्देश्य लोगों का कल्याण होना चाहिए, साथ ही बदलते समय के साथ शासन व्यवस्था में भी बदलाव पर जोर दिया। इसके अलावा खेलों को बढ़ावा देने, किसान हित और कौशल विकास पर ध्यान देने की भी बात कही। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बैनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बैनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
2: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है। माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
1: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा ने कहा है कि नीट पेपर लीक के मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। श्री नड्डा ने कहा कि यह गंभीर मामला है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा कि सरकार संसद में नीट के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेल सुरक्षा में सुधार बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2014-15 में हुई 135 रेल दुर्घटनाओं की संख्या घटकर इस वित्त वर्ष में अब केवल 2 रह गई है। महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने कहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना बेटियों के अधिकारों और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभा रही है। राज्यसभा में दिए गए लिखित उत्तर में उन्होंने बताया कि देश में जन्म के समय लिंग अनुपात में सुधार हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये अनुपात 2014-15 में 918 से बढ़कर 2024-25 में 929 हो गया है। उन्होंने ये भी कहा कि स्कूलों में लड़कियों की भागीदारी भी बढ़ी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने मनीला फिलीपींस में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान कनाडा के विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने जम्मू कश्मीर, असम, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में बाढ़ के कारण हुई मौतों पर दुख व्यक्त किया है। हांगकांग में चल रही सीनियर विश्व तलवारबाजी चैंपियनशिप 2026 में भारत ने शानदार शुरुआत की है। भारतीय खिलाड़ी तनिक्षा खत्री और प्राची लोहान ने महिला व्यक्तिगत एपे वर्ग के मुख्य दौर में जगह बनाकर इतिहास रच दिया है। वे इस चैंपियनशिप के मुख्य दौर में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला एपे खिलाड़ी बन गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Ashish Abraham. Prime Minister Narendra Modi has emphasized that the dream to build a Viksit Bharat should become a Jan Andolan and the country's youth should form the foundation of this vision. He said the welfare of citizens must remain at the heart of all reforms. The Prime Minister made the remarks while chairing a high-level meeting with secretaries to review the progress of rural development, agriculture, social welfare and allied sectors towards Viksit Bharat goals in New Delhi. The meeting was attended by the Cabinet Secretary.

दोस्तों, समय हुआ है 1:11:17। ये समय है कार्यक्रम गीत सुहाने का और मैं हूँ आपके साथ अंजू। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

मौसम में आज यूं ही मदहोशी नहीं छाई है, मौसम में आज यूं ही नहीं मदहोशी छाई है, सुना है आज वो मेरे शहर में आई है।

मंजिल की भला चाहत किसे है अब, मंजिल की भला चाहत किसे है अब, तुम मिल गए तो यकीन मानो ये सफर मुकम्मल हो गया।

की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

दुनिया के सारे दर्द पल में भूल जाते हैं, दुनिया के सारे दर्द पल में भूल जाते हैं जब हम सिमट कर तेरी आगोश में आते हैं।

इन हसीन वादियों में खो जाने का दिल करता है, इन हसीन वादियों में खो जाने का दिल करता है, और तुम्हारे साथ एक नया आशियां बसाने का दिल करता है।

जुदा हो गए हम क्योंकि जमाने को हमारा मिलना नहीं था मंजूर, पर रूह से रूह का रिश्ता आज भी शायद उतना ही गहरा है।

करीब आ एक बार फिर के दिल की धड़कनें सुन सकूं, करीब आ एक बार फिर के दिल की धड़कनें सुन सकूं, तेरी आंखों में डूबकर मैं अपने सारे गम भूल सकूं।

0: दोस्तों अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, 2:10 पर फिर से आपसे मिलेंगे। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और अन्य क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हो रही प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन बनना चाहिए और युवा इसकी सबसे बड़ी ताकत होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी सुधारों का मुख्य उद्देश्य लोगों का कल्याण होना चाहिए, साथ ही बदलते समय के साथ शासन व्यवस्था में भी बदलाव पर जोर दिया। इसके अलावा खेलों को बढ़ावा देने, किसान हित और कौशल विकास पर ध्यान देने की भी बात कही। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बैनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बैनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
2: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूँ कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
1: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेल सुरक्षा में सुधार, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2014-15 में हुई 135 रेल दुर्घटनाओं की संख्या घटकर इस वित्त वर्ष में अब केवल 2 रह गई है। संचार राज्य मंत्री डॉ चंद्रशेखर पेमा सानी ने कहा है कि भारत 6G अलायंस अब 90 सदस्यों वाला संगठन बन गया है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में उन्होंने बताया कि ये अलायंस उद्योग और शिक्षा जगत के सहयोग से चलने वाला संगठन है। इसमें दूर संचार कंपनियां, उपकरण निर्माता, स्टार्टअप, शोध संस्थान और शिक्षण संस्थान शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तरी मैसेडोनिया की अपनी राजकीय यात्रा के दौरान स्कोपिये शहर के संग्रहालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी भारत के थे, लेकिन सत्य और अहिंसा का उनका संदेश समस्त मानवता का है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने मनीला फिलीपींस में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और कनाडा के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने भारत आसियान व्यापक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने में आसियान सचिवालय के सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। हांगकांग में चल रही सीनियर विश्व तलवारबाजी चैंपियनशिप 2026 में भारत ने शानदार शुरुआत की है। भारतीय खिलाड़ी तनिक्षा खत्री और प्राची लोहान ने महिला व्यक्तिगत एपे वर्ग के मुख्य दौर में जगह बनाकर इतिहास रच दिया है। मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा और राजस्थान में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani. The news read by Ashish P. Abraham. Prime Minister Narendra Modi has emphasized that the dream to build a Viksit Bharat should become a Jan Andolan and the country's youth should form the foundation of this vision. He said the welfare of citizens must remain at the heart of all reforms. The PM made the remarks while chairing a high-level meeting with secretaries to review the progress of rural development, agriculture, social welfare and allied sectors towards Viksit Bharat goals in New Delhi. The meeting was attended by the Cabinet Secretary, secretaries of key ministries as well as senior officials from the Prime Minister's office. Government has reiterated its readiness for meaningful discussion on NEET paper leak issue in the Parliament. Speaking in the Lok Sabha, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said the government was prepared for a meaningful debate on the issue involving all sides under established parliamentary rules, keeping in mind the future of the country's youth.
4: The government is fully prepared for a discussion on the NEET paper leak, and we have maintained this position from the very first day. A request

समय हुआ है 2:11 और 12 सेकेंड। ये समय है कार्यक्रम रात सुरमय का। मैं हूँ एक बार फिर से आपके साथ जो कार्यक्रम लेकर आई हूँ, जैसे कि मैंने अभी बताया, रात सुरमय। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

मैं ही नहीं तेरी चाहत में पागल यहाँ, मैं ही नहीं तेरी चाहत में पागल यहाँ, तू भी बेकरार है मेरी तरह, ये मैं नहीं तेरी आंखें बयां करती हैं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन

दोस्तों आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम चल रहा है रात सुरमई और मैं हूं आपके साथ अंजू। लफ्ज कम पड़ जाते हैं जब मोहब्बत बयां करते हैं, लफ्ज कम पड़ जाते हैं जब मोहब्बत बयां करते हैं। कैसे कहें हम तुझे कि हम तुझे खुद से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं।

दिल की तख्ती पर कुछ इस तरह नाम लिखा है तुम्हारा, दिल की तख्ती पर कुछ इस तरह नाम लिखा है तुम्हारा, जीते जी न भूल पाएंगे तुम्हें, चाहे बदल जाए ये जहां सारा।

दोस्तों अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार और 3:10 पर भारती रहेंगे आपके साथ कार्यक्रम हमराही लेकर। मुझे अनुमति दीजिए, जल्द मिलूंगी आपसे कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड पर। शुभरात्रि, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और अन्य क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हो रही प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन बनना चाहिए और युवा इसकी सबसे बड़ी ताकत होने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी सुधारों का मुख्य उद्देश्य लोगों का कल्याण होना चाहिए, साथ ही बदलते समय के साथ शासन व्यवस्था में भी बदलाव पर जोर दिया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बैनर्जी को मानसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बैनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
1: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है। माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
0: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा ने कहा है कि नीट पेपर लीक के मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। श्री नड्डा ने कहा कि यह गंभीर मामला है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। संचार राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेमासानी ने कहा है कि भारत 6G अलायंस अब 90 सदस्यों वाला संगठन बन गया है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में उन्होंने बताया कि ये अलायंस उद्योग और शिक्षा जगत के सहयोग से चलने वाला संगठन है। इसमें दूर संचार कंपनियां, उपकरण निर्माता, स्टार्टअप, शोध संस्थान और शिक्षण संस्थान शामिल हैं। भारत ने इबोला से बचाव की तैयारियों को मजबूत करने के लिए केन्या को चिकित्सा सहायता की पहली खेप भेजी है। केन्या में भारत के उच्चायुक्त डॉक्टर आदर्श स्वाइका ने नैरोबी में 4.5 टन चिकित्सा सामग्री केन्या के स्वास्थ्य मंत्री एडन डुएले को सौंपी। इस सहायता में पीपी किट, सैंपल ले जाने की किट, इंफ्रारेड थर्मामीटर, फेस शील्ड, सुरक्षा जूते और संक्रमण से बचाव के अन्य जरूरी सामान शामिल हैं। नैरोबी स्थित भारतीय उच्चायोग ने बताया कि चिकित्सा सहायता की दूसरी खेप भी अगले कुछ दिनों में पहुंचाई जाएगी। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने मनीला, फिलीपींस में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और कनाडा के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 आज से स्कॉटलैंड में ग्लासगो में शुरू होंगे, जो 2 अगस्त तक जारी रहेंगे। इस बार प्रतियोगिता में 74 देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। भारतीय दल के सदस्यों की संख्या 125 है। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में 10 खेलों को शामिल किया गया है। मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा और राजस्थान में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Ashish Abraham. PM Modi has emphasized that the dream to build a Viksit Bharat should become a Jan Andolan and the country's youth should form the foundation of this vision. He said the welfare of citizens must remain at the heart of all reforms. The PM made the remarks while chairing a high-level meeting with secretaries to review the progress of rural development, agriculture, social welfare and allied sectors towards Viksit Bharat goals in New Delhi. The meeting was attended by the Cabinet Secretary, secretaries of key ministries as well as senior officials from the PM's office. Government has reiterated its readiness for meaningful discussion on NEET paper leak issue in the Parliament. Speaking in the Lok Sabha, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said the government was prepared for a meaningful debate on the issue involving all sides under established parliamentary rules, keeping in mind the future of the country's youth.
3: The government is fully prepared for a discussion on the NEET paper leak, and we have maintained this position from the very first day. I request that the Honorable Speaker, after consulting with the floor leaders of all parties, decide when the discussion should be held, how long should it last, on which day should it take place, and under which rules should it be conducted. The government wants all of us to come together and hold a meaningful discussion for the future of the country's youth.
2: Parliament witnessed repeated disruptions for the third consecutive day yesterday, with the opposition raising issues including the NEET paper leak case and student protests. Later, both the Lok Sabha and Rajya Sabha were adjourned for the day. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar held meeting with his Canadian counterpart Anita Anand on the sidelines of Quad Foreign Ministers meeting in Manila, Philippines. In a social media post, Dr. Jaishankar said India-Canada cooperation has been steadily growing. He said the conversation focused on achieving the goals for the relationship set by the prime ministers of both the nations. Dr. Jaishankar also met with his New Zealand counterpart Winston Peters and shared perspectives on the Indo-Pacific security situation. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal held meeting with the Foreign Affairs Minister of the Republic of Panama, Javier Eduardo Martinez Arca Vasquez, in New Delhi yesterday. In a social media post, Mr. Goyal said during their meeting they held productive discussions on deepening the India-Panama partnership across trade, investment, logistics, digital cooperation, and business-to-business engagement. The minister said they also explored ways to improve market access, unlock new opportunities for bilateral trade, and leverage India's digital public infrastructure, including UPI. Indian Navy has commissioned INS Malwan, the second indigenously designed and built Mahe-class anti-submarine warfare shallow water craft at Karwar in Karnataka. The Ministry of Defence said the vessel is equipped for underwater surveillance, anti-submarine warfare operations, low-intensity maritime operations and mine warfare capabilities. The Ministry added that the ship will strengthen coastal defence, littoral security and maritime domain awareness. With over 80% indigenous content, INS Malwan reinforces the vision of Atmanirbhar Bharat. The commissioning ceremony was presided over by Chief of the Air Staff, Air Chief Marshal A.P. Singh, in the presence of Vice Admiral Sanjay Vatsyan and other senior officials. United States has condemned Iran-backed Yemen-based Houthi rebels for threatening commercial shipping in the Red Sea after the group announced a naval blockade against Saudi Arabia. Speaking on the sidelines of a regional summit in the Philippines, U.S. Secretary of State Marco Rubio said any move restricting shipping through the Red Sea would be problematic, similar to concerns surrounding the Strait of Hormuz. In China Open Badminton, PV Sindhu, Ayush Shetty and Lakshya Sen have entered singles pre-quarterfinals in Changzhou. Double Olympic medalist PV Sindhu advanced to the women's singles second round after defeating fellow Indian player Unnati Hooda by 21-14, 9-21, 21-10 in a round of 32 clash. In the men's singles, Ayush Shetty defeated world number 1 Alvi Farhan of Indonesia by 21-17, 5-21, 21-17 to reach the round of 16. In another round of 32 match last evening, Lakshya Sen defeated Japanese player Yushi Tanaka 22-20, 15-21, 21-14. And that is the end of this news bulletin.

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं आज आपके साथ आपकी दोस्त भारती। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और शुरुआत करते हैं प्रोग्राम हमराही की इस प्यारे से गीत के साथ।

कुछ लोग हमारी जिंदगी में ऐसे आते हैं जैसे कोई खूबसूरत दुआ पूरी हो गई हो। उनकी मुस्कान हर पल को यादगार बना देती है।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, प्रोग्राम है हमराही। सच्चा प्यार दूरियों का मोहताज नहीं होता, दिलों का रिश्ता धड़कनों की आवाज नहीं होता। और जब भी एक दूसरे को पहचान मिल जाती है तो सच्चा प्यार हमेशा साथ होता है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

प्यार की हर आहट दिल में नई उमंग जगा देती है। प्यार की मधुर धुन जीवन को खुशियों से भर देती है।

जब किसी के लिए दिल में सच्चा अपनापन हो तो उसका नाम हर दुआ और हर मुस्कान में बस जाता है। और समय कह रहा है कि अब आपसे मैं अनुमति ले लूं, 4:10 पर फिर से हाजिर होंगे लेकर प्रोग्राम अरुणिमा। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए अनुमति और छोड़े जा रही हूं आपको एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और अन्य क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हो रही प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन बनना चाहिए और युवा उसकी सबसे बड़ी ताकत होने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी सुधारों का मुख्य उद्देश्य लोगों का कल्याण होना चाहिए, साथ ही बदलते समय के साथ शासन व्यवस्था में भी बदलाव पर जोर दिया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बैनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बैनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
1: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
0: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा ने कहा है कि नीट पेपर लीक के मामले

0: पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। श्री नड्डा ने कहा कि यह गंभीर मामला है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। उत्तर मैसिडोनिया के राष्ट्रपति गोर्दाना सिलजानोवस्का दावकोवा ने कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति एक महिला हैं और ये गर्व की बात है कि स्कोपे में आकाशवाणी संवाददाता शुभ्रसी महापात्रा से बातचीत में सुश्री दावकोवा ने कहा कि वे भारत के लंबे इतिहास और आध्यात्मिक विरासत से पहले से ही प्रभावित थीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के बाद उनका सम्मान और बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के बाद उन्हें दृढ़ विश्वास हो गया कि केवल महिलाएं ही दुनिया को बदल सकती हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी ऐतिहासिक राजकीय यात्रा पर उत्तर मैसिडोनिया में हैं। इस यात्रा के दौरान वे वहां की प्रसिद्ध ओहरिड झील का भी दौरा करेंगी। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इसी दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। इसके बाद 1957 में लोकप्रिय फिल्म संगीत के साथ विविध भारती सेवा की शुरुआत हुई। भारत ने इबोला से बचाव की तैयारियों को मजबूत करने के लिए केन्या को चिकित्सा सहायता की पहली खेप भेजी है। केन्या में भारत के उच्चायुक्त डॉक्टर आदर्श स्वाइका ने नैरोबी में 4.5 टन चिकित्सा सामग्री केन्या के स्वास्थ्य मंत्री एडन डुएलो को सौंपी। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू होंगे जो 2 अगस्त तक जारी रहेंगे। इस बार प्रतियोगिता में 74 देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। भारतीय दल के सदस्यों की संख्या 125 है। मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा और राजस्थान में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Ashish Abraham. Prime Minister Narendra Modi has emphasized that the dream to build a Viksit Bharat should become a Jan Andolan and the country's youth should form the foundation of this vision. He said the welfare of citizens must remain at the heart of all reforms. The PM made the remarks while chairing a high-level meeting with secretaries to review the progress of rural development, agriculture, social welfare and allied sectors towards Viksit Bharat goals in New Delhi. The meeting was attended by the Cabinet Secretary, secretaries of key ministries as well as senior officials from the PM's office. Government has reiterated its readiness for meaningful discussion on NEET paper leak issue in the Parliament. Speaking in the Lok Sabha, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said the government was prepared for a meaningful debate on the issue involving all sides under established parliamentary rules, keeping in mind the future of the country's youth.
2: The government is fully prepared for a discussion on the NEET paper leak and we have maintained this position from the very first day. I request that the Honorable Speaker, after consulting with the floor leaders of all parties, decide when the discussion should be held, how long should it last, on which day should it take place and under which rules should it be conducted. The government wants all of us to come together and hold a meaningful discussion for the future of the country's youth.
1: Parliament witnessed repeated disruptions for the third consecutive day yesterday, with the opposition raising issues including the NEET paper leak case and student protests. Later, both the Lok Sabha and Rajya Sabha were adjourned for the day. Senior BJP leader and Union Minister JP Nadda has said that the NEET paper leak issue raised by the students should not be politicized and it is not appropriate to take political advantage from this matter. Addressing media in New Delhi last evening, Mr. Nadda said it is a matter of investigation and requires in-depth discussion. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar held meeting with his Canadian counterpart Anita Anand on the sidelines of Quad Foreign Ministers meeting in Manila, Philippines. In a social media post, Dr. Jaishankar said India-Canada cooperation has been steadily growing.

एक बार फिर से हाजिर हूँ लेकर प्रोग्राम अरुणिमा। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हो गया है 4:11 और 40 सेकेंड। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। अंदाज अपना अपना एक फिल्म के इस गीत के साथ, जिस गीत को अपनी आवाज़ से सजाया है विकी मेहता ने,

अभी आपने गीत सुना विक्की मेहता और बहरोज चटर्जी की आवाज में। आगे बढ़ते हैं, अगला गीत सुनते हैं फिल्म लम्हे से लता मंगेशकर की आवाज में, संगीतकार शिव हरी और गीतकार आनंद बख्शी।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर. प्रोग्राम है अरुणिमा और अगला गीत सुनते हैं फिल्म किसी से ना कहना से आशा भोसले की आवाज में.

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं फिल्म संगीत से अनुराधा पोटवाल और पंकज उदास की आवाज में, संगीतकार आनंद मिलन और गीतकार संतोष आनंद।

इस समय कह रहा कि अब आपसे अनुमति ले ली जाए। जाने से पहले यही कहूंगी कि मैं जल्द लौट के आऊंगी 5:10 पर लेकर कार्यक्रम भोर सुहानी। तब तक ले रही हूँ आपसे अनुमति और कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और अन्य क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हो रही प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन बनना चाहिए और युवा इसकी सबसे बड़ी ताकत होने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी सुधारों का मुख्य उद्देश्य लोगों का कल्याण होना चाहिए। उन्होंने बदलते समय के साथ शासन व्यवस्था में भी बदलाव पर बल दिया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के हंगामे के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसद टिप्पणी की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
1: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सियानोस्का दाओकोवा ने कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति एक महिला है और यह गर्व की बात है। इस स्कोपजे में आकाशवाणी की संवाददाता शुभश्री महापात्रा से बातचीत में सुश्री दाओकोवा ने कहा कि वह भारत के लंबे इतिहास और आध्यात्मिक विरासत से पहले ही प्रभावित थी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के बाद उन्हें दृढ़ विश्वास हो गया है कि केवल महिलाएं ही दुनिया को बदल सकती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी ऐतिहासिक राजकीय यात्रा पर उत्तरी मैसेडोनिया में हैं। इस यात्रा के दौरान वे वहां की प्रसिद्ध ओहरीड झील का भी दौरा करेंगी। भारत ने इबोला से बचाव की तैयारियों को मजबूत करने के लिए केन्या को चिकित्सा सहायता की पहली खेप भेजी है। केन्या में भारत के उच्चायुक्त डॉक्टर आदर्श स्वाइका ने नैरोबी में 4.5 टन चिकित्सा सामग्री केन्या के स्वास्थ्य मंत्री एडेन डुएल को सौंपी। इस सहायता में पीपीई किट, सैंपल ले जाने की किट, इंफ्रारेड थर्मामीटर, फेस शील्ड, सुरक्षा जूते और संक्रमण से बचाव के अन्य जरूरी सामान शामिल हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया में मारे गए 4 अमरीकी सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। डेलावेयर के डोवर एयरफोर्स बेस पर आयोजित सम्मान समारोह में राष्ट्रपति ट्रंप ने सैनिकों को सलामी दी। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर परिवार को सौंपे गए। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इसी दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। इसके बाद 1957 में लोकप्रिय फिल्म संगीत के साथ विविध भारती सेवा की शुरुआत हुई। राष्ट्रमंडल खेल 2026 आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू होंगे, जो 2 अगस्त तक जारी रहेंगे। इस बार प्रतियोगिता में 74 देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। भारतीय दल के सदस्यों की संख्या 125 है। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज हरारे में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे शुरू होगा। और मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा और राजस्थान में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Ashish Abraham. Prime Minister Narendra Modi has emphasized that the dream to build a Viksit Bharat should become a Jan Andolan and the country's youth should form the foundation of this vision. He said the welfare of citizens must remain at the heart of all reforms. The Prime Minister made the remarks while chairing a high-level meeting with secretaries to review the progress of rural development, agriculture, social welfare and allied sectors towards Viksit Bharat goals in New Delhi. The meeting was attended by the Cabinet Secretary, secretaries of key ministries, as well as senior officials from the PM's office. Government has reiterated its readiness for meaningful discussion on NEET paper leak issue in the Parliament. Speaking in the Lok Sabha, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said the government was prepared for a meaningful debate on the issue involving all sides under established parliamentary rules, keeping in mind the future of the country's youth.
3: The government is fully prepared for a discussion on the NEET paper leak and we have maintained this position from the very first day. I request that the Honorable Speaker, after consulting with the floor leaders of all parties, decide when the discussion should be held, how long should it last, on which day should it take place and under which rules should it be conducted. The government wants all of us to come together and hold a meaningful discussion for the future of the country's youth.
2: Parliament witnessed repeated disruptions for the third consecutive day yesterday, with the opposition raising issues including the NEET paper leak case and student protests. Later, both the Lok Sabha and Rajya Sabha were adjourned for the day. Senior BJP leader and Union Minister JP Nadda has said that the NEET paper leak issue raised by the students should not be politicized and it is not appropriate to take political advantage from this matter. Addressing media in New Delhi last evening, Mr. Nadda said it is a matter of investigation and requires in-depth discussion. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar held a meeting with his Canadian counterpart Anita Anand on the sidelines of Quad Foreign Ministers meeting in Manila, Philippines. In a social media post, Dr. Jaishankar said India-Canada cooperation has been steadily growing. He said the conversation focused on achieving the goals for the relationship set by the prime ministers of both the nations. Dr. Jaishankar also met with his New Zealand counterpart Winston Peters and shared perspectives on the Indo-Pacific security situation. Dr. Jaishankar also interacted with the ASEAN Secretary General Dr. Cao Kim Horn in Manila yesterday. President of North Macedonia Gordana Sijanovska Davkova has said that it is a matter of pride that a woman is the president of the world's largest democracy, India. Talking to Akashvani correspondent in Skopje, Ms. Davkova said she has always been impressed by India's rich history and spirituality. She added that she was deeply impressed after meeting President Draupadi Murmu and felt that women have the potential to bring change in the world. President Murmu is on a historic state visit to North Macedonia. Today is National Broadcasting Day. On this day in 1927, the first ever radio broadcast in the country went on air from the Bombay station under the Indian Broadcasting Company. On the 8th of June 1936, the Indian State Broadcasting Service became All India Radio. This day highlights the pivotal role broadcasting has played in India's development, educational outreach and cultural preservation. The 23rd Commonwealth Games will begin in Glasgow, Scotland from today. The Games, which will continue until the 2nd of next month, will see athletes from 74 nations compete across 10 sports at 4 venues. Olympic medalists Neeraj Chopra, Mirabai Chanu and Lovlina Borgohain will represent India at the Games. India is sending a 125-member contingent, including para-athletes. India had won 61 medals in the previous edition held in Birmingham in 2022. Indian men's cricket team will play Zimbabwe in the first of the three-match T20 international series today at Harare. The match is scheduled to begin at 4:30 p.m. Indian Standard Time. Shreyas Iyer-led India will play the second T20 on Saturday and the third match on Sunday at the same venue. India hold a commanding advantage over Zimbabwe in the shortest format of the game. And that is the end of this news bulletin.

एक बार फिर से आप सबका मैं स्वागत करती हूँ प्रोग्राम बहुत सुहानी में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम भोर सुहानी की इस भजन के साथ।